मोहे ना उरवार ना पार माया मोहि वसारिया जगत पिता प्रतपाल बाजो गुरु अचेत है सब बद्दी जमकाल नानक गुरमत उबरे सच्चा नाम संभाल श्री राग महला तीजा त्रै गुण माया मोह है गुरमुख चौथा पद पाए।

पाय लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय बिन गुर महल ना पाइए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहु जिद्दू पाइए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख विहानी मनमुख अंध ना चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई रहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हूं मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पात्र

तव ताप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाय सदा आनंद रह दिन राती मिल प्रीतम सुख पाय जो सतगुर की शरणागति हौ तिनके बल जाऊं दर सच्चे सच्ची वडियाई सहजे सच समाऊ नानक नदरी पाई गुरमुख मेल मलाव श्री राग महला तीजा मनमुख कर्म कमावनी ज्यो दुहागण तन शिंगार सीज कंत न आवई नित नित होए खुआर पिरका महल ना पावई ना दिसै घर बार भाई रे एक मन नाम त्याए संता संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाए रहाउ गुरमुख सदा सुहागणी पिर राखिया उर धार मिठा बोलह निव चलह सेजै रवे पतार सोभावंती सुहागणी जिन गुर का हित अपार पूरे भाग सतगुर मिले जा भागै का उदौ होए अंतर हो दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए गुर के भाणै जो चले दुख ना पावे कोई गुर के भाणे विच अमृत है सहजे पावे कोई जिन्ना प्राप्त तिन पिया हों मैं विचों खोए नानक गुरमुख नाम त्याई है सच मिलावा होए श्री राग महला तीजा जां पिर जाने अपना तन मन अगे धरे सुहागणी कर्म कमावंदियां सेई कर्म करे सहजे साच मिलावड़ा साच वडाई दे भाई रे गुर बिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाई है जे लोचै सब कोए रहाउ लख चौरासी फेर पया कामण दूजै पाई।

अंते हुए सखाई, अपने मनचित कह कहाई, बिन गुर आप ना जाई। हर जीव दाता भगत वच्छल है, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे, गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया। विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निदान। मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए, गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल हो।

दे, गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे, जन्म पदार्थ खोए रहाओ, जिन्नी चाखिया तिन्नी साद पाया, बिन चाखे भरम भुलाए, अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए, पीवत हूं प्रमाण भया पूरा शब्द समाए, आपे दे ता पाई है

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

अत सबल है छड़ी ना कितै उपाय दूजे पाए दुख नाहिंदा बहुती दे सजाए नानक नाम लगे से उबरे हम

सतगुर सेव मन निर्मला हौ मैं तजवे कार आप छोड़ जीवत मरे गुर कै शब्द विचार धंदा तावत रह गए लागा साच प्यार सच रते मुख जले तित साचे दरबार सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार इशनान दान जेता करह दूजे भाई खुआर हर जियो अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार नानक नाम संभाल तू गुर कै हित अपार श्री राग महला तीजा किस हों सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए सतगुर का भाणा मन लई विचों आप गवाए एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए नामै ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए।

मन तन शीतल साच सियो सास न बिरथा कोई मेरे मन हर का नाम त्याए साची भगत

अगली मनुआ रज्जा सहज सुपाय गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चौ जुगी सचो सच सुनाय हौ मैं मेरा रह गया सच्चे लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है बिन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदला फिर आवे जाय नदर करे।

मंदी पापी पचह पचाई सू प्रभ नदर ना आवई मनमुख बूझ ना पाई जिस विखाले सोई वेखै नानक गुरमुख पाई। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग ना तुटई हम मैं पीड़ ना जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाई। गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द भरम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए रहाउ। हर इको दाता वर्तदा दूजा अवर ना कोए शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए सब नदनी अंदर वेखदा जय पावै तै दे हम मैं।

तिना आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गाव है साचे नाही प्यार कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई है हर सिउ रह समाय रहाउ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुभाय गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु ना जाय जिहवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस।

सुतियां रहन विहाई एक अपने भाणे कढ लयन आपी लयन मलाई आपी ही आप मन वसिया माया मोह चुकाई आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाई सबना का दाता एक है भुलियां ले समझाई एक आपे आप खुआयन दूजे छड्डियन।

आई अज्ञान मती अंधेर है बिन फिर देखे भुख ना जाए। आवहो मिलहो सहेली हो मैं फिर देहो मलाय। पूरे भाग सतगुर मिले फिर पाया सच समाय। से सहिया सुहागनी जिनको नदर करे खसम पछाण है अपना। तन मन आगे दे घर वर पाया अपना हम मैं दूर करे। नानक सोभा वंतियां सुहागनी अन दिन भगत करे। श्री राग महला तीजा एक पिर रावे है अपना।

सोए गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए नानक नाम संभाल तू जित सेवे है सुख होए श्री राग महला तीजा जग होमै मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए मल होमै धोती किवै न उतरै जे सो तीर्थ नहाए बहु

ता निर्मल हुए मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी तो होए रहाओ मन मैल है भगत ना होवे नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गुआए गुर प्रसादी मन वसे मल हउ मैं जाए समाए ज्यों अंधेरै दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड़ दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हम तिस बलिहारे जाऊं ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थां मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाव नानक नाम ना विसरै सच्चे माहि समाव श्री राग महला चौथा घर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले घर आए जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखिए दुख जाए जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाउ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मलावे सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जेवड अवर ना कोए हम गुर सरनाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए मन हठ किने ना पाया कर अपाव थके सब कोए सहस सियाणप कर रहे मन पूरे रंग ना होए कूड़ कपट किने ना

थी मेरे सतगुर नाम दृढ़ाई रहाउ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास सतगुर सेवै लगिया कड रतन देवै परगास धन वड भागी वड भागिया जो आए मिले गुर पास जिन्ना सतगुर पुरख ना भेटे हो से भागहीन वस काल ओए फिर जोन पवाई है विच विस्ता कर विकराल ऊना पास दवास ना पिती है जिने अंतर क्रोध चंडाल सतगुर पुरख अमृत सर वडभागी नावह आए हुन जन्म जन्म की मैल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लिव लाए श्री राग महला चौथा गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माय गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाय हीरा हीर मिल भेदया रंग चलूलै नाय मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मलावै सोए रहाओ मन रंगो वडभागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडाए रंग स्यों हौं सतगुर कै बल जाओ बिन सतगुर हर नाम ना लभई लख कोटी कर्म कमाओ बिन भागा सतगुर ना मिलै कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थी मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बोहत हर नाव है इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कह पाण जो चलै विच बोहित बैठा आए तन तन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर लय मलाय श्री राग महला चौथा हौं पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे।

ताके देव हो अपना नाम। श्री राग महला पंजवा नाम त्याए सो सुखी इस मुख उजल होए पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए मेरे मन हर हर नाम त्याए नाम सहा

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त भाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै होमे ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा।

पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोहना विसरै जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको थान थनंतर आप जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप इकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होय गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए रहाउ जन्म मरण का पाउ गया पाउ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल थान थनंतर रव रहया

तू हुए जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आय अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुर पूरे की चाकरी

संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरु नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां पूरा सतगुरु जी मिले पाईए शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाहु कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह चरण कमल का आसरा दूजा नाहीं थाव मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाव हर जपिय आराधिय आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवां प्रीत लगी तिस सच सियो मरे न आवे जाई ना वे छोड़िया विछड़ सब मह रहिया समाय दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माई भाई रे मीत करहो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोई रहाव दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवे शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निधान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखै सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उर धार मेरे मन हर बिन अवर ना कोय प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोई रहाव रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक गिन कीता तिसह न जानी मन मुख पास न पाक अंतर बाहर रव रहिया तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहिया अंतर हों मैं कूर भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर राख लिहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखनहार महा बिकट जम भया नानक नाम ना विसरऊं
कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा। मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देश सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश। हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाउ। नाम निधान त्याई है मस्तक होवै भाग कार्य सब सुवारी है गुर की चरणी लाग। हौ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग कर संगत तू साधकी अठ सठ तीर्थ नाओ जियो प्राण मन तन हरि साचा इहो सुआउ। एथै मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागती सर्व कटां के नाथ श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ आपने गुरु हुआ कृपाल सतगुर कै अपदेसे बिनसे सर्ब जंजाल। अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार रहाउ। गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कट्टन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे बिस्थार। सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा

अस बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ। साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रहन ना जाए, मेरे मन तन भुख अति अगली, कोई आन मलावे माई। चारे कुंडा भालियां सह बिन अवर ना जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस भंडार, सदा

सदा सदा आराधी है। एहा मातव सेख मन तन मिठा तिस लगे, जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजवा। संत जन हो

पाई है अपनी नजर ने हाल कर्म प्राप्त तिस हुए जिसनो हुए दयाल मेरे मन गुरजे वड्यावर ना कोए दूजा थाओ ना को सुजे गुर मेले सच सोए रहाव सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरनी जिन मन लगा सेवड भागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब मह रहया समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लये तराए कित मुख गुर सालाही है करन कारण समरथ से मथे निचल रहे जिन गुर धारिया हाथ गुर अमृत नाम पी आलिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अग खंड जिन गुर सेविया अपना जम दूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लगे खोज दिता ब्रह्मांड नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन महमंड।

हर जानो हर लिव उदरी, नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां, कर दूजा गोयल आया गोयली, क्या

जिचर वसया कंत घर जियो जियो सब कहात जा उठी चल से कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात पे यड़े सहो सेव तू सहरड़े सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख सबना सहरे वंजना सब मुकलामन हार नानक तन सुहागनी।

आर किसह त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याए छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ दुख कलेश ना पौ ब्या।

आधारे पाप सगली जाहि हौ तिनके बलिहारने जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसे साच हर का नाऊ सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवा संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार सत संतोख दया कमावे ए करनी सार आप छोड़ सब हुए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म बीचार श्री राग महला पंजवा दो कृत सो कृत मंदे।

मान अभमान मंदे सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही, कहन कहावन एहु कीर्त करला कथन कह

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसे, पूर्ण होए काल रहाउ। गुर समरत अपार गुर, वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला, गुर जीवड़ अवर ना कोई, गुर करता गुर करनहार।

कीमत किनै ना पाइया सब सुन सुन आखै सोई। पीर पै कामर सालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद। बरकत तिन कहो अगली पढ़दे रहन दरूद। पुछ ना साजे पुछ ना ताही

तेरे जुगह जुगह भंडार महला पहला सबे कंत महलियां सगलियां करह श्रृंगार गणत गणावने।

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कहित प्यार निस अंधारी।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गोर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार ने दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए है गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए।

प्रगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुरु जी मिले ता सहजे लय मलाय कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा।

दुख अगला मनमुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए वेद पकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हौ सद बलिहार जास चहो जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पछाण घर वसै हों मैं तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरणी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी क्यों फिर रहे सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊ गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊं तिस बिन घड़ी ना जीव।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मर

पर पुस्तक पार काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाईए रतन विचार मन दी जय गुरे अपने पाईए सर्ब प्यार मुक्त पदार्थ पाईए अवगण मेटन हार पाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए पूछो हो ब्रह्मे नारद वेद व्यास कोई रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफलो बिरख हरियावला शाम कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर भंडारे सोए गुर भंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुख दाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार भवजल बिखम डरावण ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर भय का बोहिथा नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावणी नाम ना जपै रसाए घट बिरसै दुख अगलो जम पकड़ै पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नावै धनबाद है भूलो मार गयाथ साचो साहिब सेवी है गुरमुख अकथो काथ आवै जाए पवाई है पै किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों।

ता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी

गुरमुख अंतर रव रहिया बख्शे भगत भंडार रहाव। रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यों सुख घणो मन तन शांत शरीर। बिन जल घड़ी ना जीवई प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक

ते खवै दुध कौ खपण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन मुख गणत गणामणी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवे जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा नेहो ना तुटई जे सतगुर भेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाईए त्रिभवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै।

मनमुख सूझी ना पवै बिछड़ चोटा खाई। नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाय। श्री राग महला पहला मनमुख भुलै भलाई।

माया परम भुलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाय रहाओ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाय तुरह विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिललाय बिछड़िया गुरमेल सी हर अस नाम प्यार साच सहज सोभा घणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावै त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुलिए भेखी बहुत अभमान तीर्थ नाता क्या करे मन मह महल गुमान गुर बिन किन समझाइए मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाइए गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

वाचा करी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाईए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए सच्चे से तीर।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चलसी,

तड़ी गुर बिन बूझ ना होए नाम वडाई जे मिले सच रपै पत होए जो तुद भावे से भले खोटा खरा ना कोई गुर सरनाई छुट्टी है मन मुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की करिए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए कहने हाथ ना लगई सच टिके पत पाए गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन ना जाए जित तन नाम ना पावे तित तन हो मैं वाद गुर बिन ज्ञान ना पाई है।

सिर करवत तर आए, तन है मन चल गालिए, ती मन ते रोग ना जाए, हर नामे तुल ना पुजई, सब डिठी ठोक बजाए, कंचन के कोट दत करी, बहु हैवर गैवर दान, पूम दान गवां कणी पी

ताजिए एक चानण तेहो लोए, कर्म मिले सच पाईए तुर बख्शना मेटे कोई, साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाई, अकात कथा विचारिए जे सतगुर माहि समाए, पी अमृत संतोखिया दरगह पैंदा जाए, कट कट वाजे किंगरी अन दिन शब्द सुपाए, बिरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए, नानक नाम ना विसरे छूटे शब्द कमाए, श्री राग महला पहला चित्ते दिसह तौल हार, बग्गे बंक द्वार कर मन खुशी उसारिया दूजे हित प्यार, अंदर खाली प्रेम बिन तै ढेरी तन शार, पाई रे तन तन साथ ना होए, राम नाम तन निर्मलो गुरदात करे प्रभ सोए, रहाओ राम नाम तन निर्मलो

है अपने तिया पूत संजोग नारी देख भगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चल वित जावणु साकत डोल डोलाई बाहर ढूंढ विगुची है कर्म है वस्त सुथाई मनमुख हो मैं करमुसी गुरमुख पल्ल पाई साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का एहो तनु अग्नि पास फिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोय नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होय ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होय इं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोय गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोय अगन मरै जल पाई है ज्यो बारक दूध माए बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराए नानक गुरमुख हर रास मिले।

पूरा सतगुर रस मिलै गुर तारे हर नाउ रहाउ चलना चलना जे करी जाना चलन हार जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार डर कर महला सोहने पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना रूपा संती है माल जाल जंजाल सब जग मह दो ही फेरी है बिन नामे सिरकाल पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल पुत्ता देख विगसी है नारी सेज पतार चोआ चंदन लाई है कापड़ रूप शिंगार खेहू खेर लाई है छोड़ चले घर बार महर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है जल बलिया अभमान मन मुख नाम वसारिया ज्यों डब ददा कान हों मैं कर कर जाए सी जो आया जग माही सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुवाही गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिय सच नाम सिर शाह पातशाह मैं हर नाम ना विसर हर नाम रतन वेसाह मन मुख भोजन पच मोए

खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोहत के चलना दिल समझ तू पे पहुंच शब्दाह माहे वखाणिय विरला तांबू जय कोय नानक वखाण बेनती जल तल मही अल सोय अल्लाह अलग।

तिसनो वाकी है जिस शेष ना होवी लेख असमान धरती चल सी मोकाम ओही एक दिन रव चल।

अष्टपदिया श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होवे कोई।

बिन सतगुरु को मग ना जाने, अंधे ठौर ना काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया, अंत गया पछताई, पे अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अन दिन भगत करह दिन राती, हम मैं मोच काया, जिस स्यों राता तैसो हुए, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे पाहु लाई, गुर शब्दी बीचार, सतगुर सेवे सहज उपजे, हम मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे, सच रखिया उरतार, प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाई, नाम निदान हर मन वसे, हम मैं दुख सब जाई, सतगुर शब्द सुनाया, हम सद बलिहारे जाऊं, अपने मन चित कह कहाई, बिन गुरे आप ना जाई, हर जियो भगत वश्यल सुख दाता, कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा

गुर कै पाणे जे चल है ता अन दिन राचे है हर नाई रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़े है चहो दिस जाहे, जेता उड़े है दुख घणे नित दाज है तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाहे। साखा तीन नवारियां एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाई। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पय किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊं, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट कर्म कम

तै पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े, दूजा भाव ना जाने। सतगुर भेटिया निर्मल हुआ, अन दिन नाम बखाने। एको पढ़े एको नाउ बूझे, दूजा अवर ना जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पलाए।

पंडित पड़ पड़ वाद विखाण है बिन गुर परम पलाय लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जा नाउ चेतै तां गत पाई जा सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गावया थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

पाईए त्रै गुण भरम भलाए पढ़िए गुणिए क्या कथिए जा मुंडो हो कुत्था जाए चौथे पद में सहज है

सहज मलाईसी शब्द मलावा होई, बिन सहजे सब अंध है माया मोह गुबार, सहजे ही सूझी पई सच्चे शब्द अपार, आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार, सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपौ।

समाते गुरमुख अमृत बाणी बोलह सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक अराध है गुरमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवी है।

कहा सच्चा शब्द पाती उपजय सच्चे सच्चा नाम जिन्नी हऊ मैं मार पछाणिया हऊ तिन बलिहारे जाऊं मन मुख सच ना जा।

ललता देख कै भज पए सतगुर सरना। सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई। जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन। तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन। नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन। श्री राग महला पंजवा। जाको मुश्कल अत बने टोई कोए ना दे लागू होए दुश्मना। साक पे भज खले सबो भजै आसरा। चुकै सब असराऊ केत आवै उस पार ब्रह्म।

पार ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संगार पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमुख सिमरत तरिया शास्त सिमरत बेद चार मोखागर बिचरे तपे तपि सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारिया रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़र सातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृतना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किश कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यो रंग दोहा सिरिया का खसम आप अवर ना दूजा थाउ सतगुर तुठै पाया नानक सच्चा नाउ तेरी राग महला पंजवां घर पंजवां जानो नहीं पावै कवन बाता मन खोज मार्ग रहाउ ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवै प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता घाट ना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी सरन पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला कर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया सुर्ग मच पयाल जियो हों वारी हों वार ने कुर्बान तेरे नाम नु रहाओ तुद संसार पाया सिरे सिर तंदे लाया वेख है कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आपहु तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानिया खसम हो खुतियां फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो
सुहागनी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लए मलाई दियो, हुक्म जिन्ना नु मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सहिया से सुहागनी, जिन सह नाल प्यार जियो, जिन्ना पाने का रस आया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए, जो सब सह लए मलाए जियो, सतगुर मिले फल पाया, जिन विचों अहंकरण चुकाया, दुर्मत का दुख कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नदर करह निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिए, जित मिलिया नाम वखाणिए, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर बिटो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया, नदर करे जे अपनी, आपे लए रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जां को जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो, सब संयम रहे सियाणपां, मेरा

अपना बिरद संवारिया कंठ लाए कह रखियों लगे ना तत्ती वाउ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छे अड़ा फल पाया साहा पातशाह सिर कसम तू जप नानक जीवै नाउ जियो तुदे आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस पावै तिसै बुझाई जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चकाया कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो गोपी नै गोवालिया तुदे आपे गोहे उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिनी दूजा पाउ चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह बड़े आईया अन मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जेवड़ अवन ना कोए जियो रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा अम अबे थाम मिठड़ा भैन भाई सब सजना तुद जेहा ना ही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाऊ बीजन लगा आस कर हर बोहल बख्श जमाए जियो हाँ गुर मिले एक पछाण दा दुईया कागल चेतना जान दा हर इक तै कार लायोन ज्यो भावे तिवें नभाए जियो तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो गुर दी बाण कवाए पैनाइयो हाँ हो आ माहर पिंड दा बाने आंदे पांज शरीक जियो हाँ आया सामे ते हंडिया पांज किरसान मुझेरे मेहंदिया कन कोई कड ना हंगई नानक बुट्टा कुग ग्राउ जियो हों वारी घुमा जामदा इक साहा तुद त्याए दा उजड़ थेहो वसायो हों तुद विटहो कुर्बान जियो हर इत्थे नित त्याए दा मन चिंदी सो फल पाए दा सबे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो मैं छड़िया सब तंदड़ा गुसाई सेवी सचड़ा नौ निध नाम निधान हर मैं पल्ले बद्दा शिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुरे अंतर शब्द वसाया सतगुर पुरख विखालिया मस्तक तर कै हाथ जियो मैं बद्दी सच धर्म साल है गुर सिखा लहंदा पाल कै पैर

दड़ाया, सब मुक्त हुआ सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो, सब शिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुन हो अरदास जियो, फूक बजाए सब डिठिया, तुस आपे नयन छडाए जियो, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रयान दा, सब सुखाली बुठिया, इहो हुआ हले मीराज जियो।

पहला पहरा छूटेगा हर चेता, दूजे पहरे रहन के बन जारिया मित्रा, पर जोबन मैं मत अहमस काम व्यापिया बन जारिया मित्रा, अंदुले नाम ना चेता, राम नाम घट अंतर नाही, होर जाने रस कस मीठे, ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही, जन्म मर हो गए झूठे, तीर्थ वरत सुच संयम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुबधा व्यापै दूजा, तीजे पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए, जोबन कटै जरुआ जिनह बन जारिया मित्रा, आम कटै दिन जाए, अंतकाल पछतासी अंबले, जां जम पकड़ चलाया, सब कुछ अपना कर कर राखिया, खिन मह भया पराया, बुद्ध वसरजी गई सियाणप, कर अवगुण पछताए, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे, प्रभ चित हो लिवलाए, चौथे पहरे रहन के बन जारिया मित्रा, बिरद भया तन खीन, अखी अंध ना दिसई बन जारिया मित्रा, कन्नी सुने ना वैण, अखी अंध जीव रस नाही, रहे परा कौ ताणा, गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे, मन मुख आवण जाना, खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै, आए चले क्या मान, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, गुरमुख शब्द पछाण, ओढ़क आया तिन सहया बन जारिया मित्रा, जर जरवाणा कन, एक रत्ती गुण ना समाणिया बन जारिया मित्रा, अवगण खड़सन बन, गुण संयम जावे चोट ना खावे, ना तिस जमण मरना, काल जाल जम जोहे ना साके, पाए भगत पै तरना, पत सेती जावे सहज समावे।

बणजारिया मित्रा हर पाया उदर मंजार हर त्यावै हर उचरै बणजारिया मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख बीचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिय कृपा तार दूजे पहरे रहण कै बणजारिया मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिए बणजारिया मित्रा लै मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दित्ते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन लिव लाए कहो नानक दूजे पहरे प्राणी तिस काल ना कबहू खाए तीजे पहरे रहन कै बणजारिया मित्रा मन लगा आल जंजाल धन चितवै धन संचवै बणजारिया मित्रा हर नामा हर ना संभाल हर नामा हर हर कदे ना संभालै

जिन्ना मन जिन पासा ढालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबला हर जन मेल जन सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर कपड़ो हर सोभा देव हो जित सवरै मेरा काजो हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दवाया खंड वर पंड हर सोभा होई एहो दान नार लै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया हर पुरख न कभी बिनसै जावे नित देवे चढ़े सो आया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सोहंदी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी श्री राग महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निबह तेरे नाले संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोए ना जाए मन चिंदे से फल पावह चरण कमल चित लाए जल थर पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जीओ मित्रा दिख सागर संसारी चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापै गुर पूरा भेटै वडभागी आठ पहर प्रभ जापै आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हार झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निश्चल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेवे निश्चल आसन पाया तह जन्म ना मरन ना आवन जाना संसार दुख मटाया चित्र गुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख गामी इच सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले श्री वछुनिया अंतर बाहर सरबत रवया मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मेल जीवे मीना हर पी आगाने अमृत बाने

पाए नाउ सर्बस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना। श्री राग के संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना अठ मजाहू महापिरी पसे क्यों दीदार संत सरनाई।

धीरज क्यों करै, नाम बिहूना तन मनहीना। जल बिन मछली ज्यों मरै, मिल मेरे प्यारे प्राण आधारी। गुण साध संग मिल गावी, नानक के स्वामी तार अनग्रहो। मन तन अंक समावे, दखना सोहंदड़ो हबठाई। कोई ना दिसै दूजड़ो, खुलड़े कपाट। नानक सतगुर भेक ते चंत, तेरे बचन अनूप अपार। संतन आधार, बाणी बीचारी है जीओ। सिमरत सास ग्रास, पूर्ण विश्वास। क्यों मनो बेसारी है जीओ, क्यों मनो बेसारी है। निमख नहीं टारी है, गुणवंत प्राण हमारे। मन वांछत फल देत है स्वामी, जी की बिरथा सारी। नाथ के नाते सब कै साथे, जप जुए जन्म ना हारी है। नानक की बेनंती प्रभ पह, कृपा कर पव जल तारी है। दखना धूड़ी मजन साधखे, साई थिए कृपाल। लद्दे हब्बे थोकड़े, नानक हर तन माल। संत सुंदर स्वामी ता

आप मूर्यो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ न माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं पोहया दखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथाए से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारे।

तू आपे कमल अलिप्त है, सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा, एक निमख करी कर ख्याल, हर तुदहो बाहर किस नहीं, गुर शब्दी वेख निहाल। सलोक महला तीजा, हुक्म न जाने बहुता रोवे, अंदर धोखा नींद ना सोवे, जे तन खसमे चले रजाई, दर कर सोभा महल बुलाई, नानक करमी एह मत पाई, गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा, मनमुख नाम मिहूनिया, रंग कुसुंबा देख ना भुल, इसका रंग दिन थोड़िया, सोचा इसदा मुल। दूजे लगे पच मोए, मूर्ख अंध गवार, बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार, नानक नाम रते से रंगले।

लख चौरासी फेर पया मर जम्मै होए खुआर। सतगुरु की सेवा सो करे जिसनो आप कराए सोए। सतगुरु विच नाम निदान है कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सियो तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले ना विछड़ै सहज समावै सोई। महला तीजा सो भगौती जो भगवंत जाने। गुर प्रसादी आप पछाण धावत राखै इकत घर आने। जीवत मरे हर नाम बखाण ऐसा भगौती उत्तम होए। नानक सच समावै सोए महला तीजा। अंतर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए। सत

पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए। पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर ना सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से।

प्राणी जरा मरण भव विसर गया कटंब देख बिकसह कमला ज्यों पर कर जो है कपट नरा दूड़ा आयो हे जमह तना तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए कोई कोई साजन आई कहे मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया विखम घोर पंथ चालना प्राणी राव सस तह ना प्रवेशं माया मोह तब बिसर गया जा तजियले संसार आज मेरा मन प्रगट भया है पेखी अले धर्म राहो तह कर दल करन महाबली।

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह तार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम फलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाण।

हे नर गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना अहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछतावेगा मूड़िया तू कमन कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिसमेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछै पछताना निकुट्टी दे देख धुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी कर आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आचो हो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहू रवदास सम दल समझावै को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभउ गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुर पूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पलै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै गुर पूरै हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पलै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावै मेरे प्राण जीवाया।

करहो प्रित पाला, मेरा मात पिता गुर सत गुर पूरा, गुर जल मेल कमल विगसै जियो, मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै, हर हर दया करहु गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत संगत हर गुण गाए, जग भौजल।

समदस्ते तिस कै हों वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हों सतगुर विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हों सतगुर विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरतै भिन्न भिन्न ना रलई किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हों सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चात्रक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों भोली जियो भोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पानी तन

रहाउ। एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिली है त्रिया तुद भगवंता। मोहे रहन ना विहावे, नींद ना आवे, बिन देखे।

आई पया हर तीरे द्वारे दर्शन पेखत मन आगावे नानक मिलन सुपाई जीव माज महला पंजवा दुख तदे जा विसर जावे भुख व्यापै बहु विध तावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवे दीन दयाला जीव सतगुर मेरा वड समरथा जिये संभाली ता सब दुख लत्ता चिंता रूप गई हो पीड़ा आप करे प्रतपाला जीव बारक वांगी हों सब किश मंगा दिन दे तोट नाही प्रभ रंगा पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गोपाला जीओ हों बलिहारी सतगुर पूरे जिन बंधन काटे सगले मेरे हिरदय नाम दे निर्मल किए नानक रंग रसाला जीओ माज महला पंजवां लाल गोपाल दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौ जीवा जीओ दुख भंजन निदान अमोले निरपो निरवैर अथाह अतोले अकाल मूर्त अजूनी संभो मन सिमरत ठंडा थीवा जीओ सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृपतायन गुरमुख अमृत पीवा जीओ दुख सुख प्यारे तुद त्याई एह समत गुरु ते पाई नानक की धर तू है ठाकुर हर रंग पार परीवा जीओ माज महला पंजवा धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया धन मूरत चसे पल घड़िया धन सो उए संजोगा जीओ उदम करत मन निर्मल हुआ हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया नाम निधान सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जीओ अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कथी ते आप बखानी गुर कहया सब एको एको अवर ना कोई होएगा जीओ अमृत रस हर गुरते पिया हर पैनन नाम भोजन थिया नाम रंग नाम चोज तमाशे नाउ नानक कीने भोगा जीओ माज महला पंजवां सगल संतन पह वस्त एक मांगो करूं बिनंती मान त्यागो वार वार जाई लख वरिया देहो संतन की तू राजीओ तुम दाते तुम पुरख बधाते

कीता, आत्मगर बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुद जेवड अवर ना सूरा जियो। रेन संतन की मेरा मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से पूरा जियो। माज महला पंजवा, विसर नाही ए बड़दाते। कर किरपा भगतन संग राते, दिनस रहन जियो तुद त्याई। एहो दान मोहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई। सब किश दिया पली आ जाई, आनंद बनोद चोज तमाशे। तुद भावै सो होना जियो, जिस दा दिता सब किश लैना। शक्ति ही अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली सीतल पवना। सहज केल रंग करना जियो, सा बुद्ध दी जय जित विसरह नाही। सा मत दी जय जित तुद त्याई, सास सास तेरे गुण गावा। ओट नानक गुर चरना जियो, माज महला पंजवा। सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई। सोई जप जो प्रभ जियो पावे, भाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। तू संतन का संत तुम्हारी, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करह प्रतपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला। अपने

प्यास प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जीओ। यो बारक पी खीर अगावे ज्यो निर्तन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग इहो मन पीना जीओ। ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जीओ। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जीओ। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जीओ। जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे। नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जीओ। जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना। तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जीओ। हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त पय कनेरे। नाम निदाना गुरमुख पाई कहो नानक विरली दीठा जीओ। माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गहर गंभीर है।

सूत सेवक संग राता, प्रभ प्रत पाले सेवक सुख दाता, पानी पक्का पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो, काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावै जो साहिब पावै, सेवक अंतर बाहर माहर जियो, तू दाना ठाकुर सब विद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है, जो किस ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही

सो गहर गंभीरा गौहर जीव माज महला पंजवा सब किश घर मह बाहर नाही बाहर टोले सो परम पलाही गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया सो अंतर बार सुहिला जीओ चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बीचारा अणद बनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जीओ जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते

तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटोह जो मन तन तुद आराधे जीओ तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिसे अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभ लादे जीओ से वड पागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जीओ तिनकी सरण परया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कौ तिस प्रभ अगम अगादे जीओ माज महला पंजवां तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा असथूली तू जल निद तू फेन बुदबदा तुद बिन अवर ना पालिए जीओ तू सूत मणिये पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद

हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उदारी किल विख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए कर जोड़ एक बिनो करीजै कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक कहो प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो मा

दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वाण त्रेण त्रे पवन की तुन हरिया कर्णहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

प्रीतम ठाकुर अत पारी तुमरे कर्तव तुम ही जानहु तुमरी ओट गोपाला जीयो गुण गावत मन हरिया हुए कथा सुनत मल सगली खोए।

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जीव, सब किस बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहो मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई, जन्म

आय कर कृपा प्रभ भगती लाभ हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवा पये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारी जियो अपने जी जंत प्रित पारी ज्यों बारक माता संभारी दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारी जियो जल थल पूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइय कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्यानी जे खिन मह सगल उदारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चौबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो संतां से तीरंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा, आप

तुद त्याई जीओ माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रब तुठे गुरपूरे के चरण मन उठे सहज समाद लगी लिव अंतर सोरा

गुर के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा टाहया जियो, मन पन बसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जियो, जो किछ करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किशु ना जापे, अपनिया संतान आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जियो, चरण कमल जन का आधारु, आठ पहर राम नाम वपारु, सहज आनंद गावह गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जियो, माज महला पंजवा, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित बस है हर जन, सच्चे नाम विटहो कुरबाण जियो, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणु जियो, सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

ओ परम खोया गुरपूर देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वाडे ऊच अपारा नौ निज नाम भरे भंडारा आदि अंत मद प्रभ सोई दूजा लवै ना लाई जियो।

साथ नहीं सुख पाया, सो जन्म न जूए हारी जीव। नाम अवखद जिन जानते रह पाया, जन्म जन्म कार

त्रिज्य सागर कटिया जम की फासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग पये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिथे लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर बोहित पाए।

निर्मल जिन देखे सब उतरह कलमल नानक नाम त्याए त्याए जीवै बिनसिया ब्रह्म भौती था जीओ माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगे।

ध्यान दिन नित जागी, बाहा पकड़ तिस स्वामी मेले, जिस कह मस्तक लहना, चन कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइए, जिस सिमरत वार निह चल पाइए, नानक कहो प्रभ होए दयाला, तेरा कीता सहना, राग माज अष्टपदियां।

सुहावनिया मनमुख भूला ठौर ना पाई जमदर बद्दा चोटा खाई बिन नावै को संग ना साथी मुक्ते नाम त्यावनिया साकत कूड़े सच ना पावे दुबदा बांदा आवे जावे।

सब सुन्नी रोवै ताही अवगुण मुठी महल ना पाई अवगण गुण बखशावणिया पेई अड़ै जिन जाता प्यारा गुरमुख बूझै तत बीचारा आमन जाना ठाक रहाई सच्चै नाम समावणिया गुरमुख बूझै कथ कावै सच्चे ठाकुर साचो पावै नानक सच कह बेनंती सच मिलै गुण गावणिया माज महला।

माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया गुरमती परगास हो आजी अन दिन हर गुण गावणिया रहाऊ।

भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साथ मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणी।

निर्मल नाम त्यावनिया जीवन मरना सब तुदै ताई जिस बख्शे तिस दे वड्याई नानक नाम त्याए सदा तू जम्मन मरन सवारनिया माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तक

आप करे चाहे आप कराए, पूरे गुर कह शब्द मलाई, नानक नाम मिले वडियाई, आपे मेल मलावणिया, माज महला तीजा।

नाही। जामपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किस नदर ना आवे। मन मुख पाप पचावनिया, एक रंग राते जो तुद आप निवलाई। पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता। सब इच्छा आप पुजावनिया, हर जीओ तेरी सदा सरनाई। आपे बख्शे दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ ना आवे। जो हर हर नाम त्यावनिया,

तू आपे सच बुझा बनिया जिन सच जाता से सच समाणी हर गुण गावे सच वखाणी नानक नाम रते बैरागी

सदा नाली गुरु प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुत्ता।

गत पाई, भगती रत्ता सदा बैरागी, आप मार मनावनिया, आप उपाय तंदे लाई, लख चौरासी रिजक आप अपड़ाई, नानक नाम त्याई सच।

कै शब्द परख परखाया। जिन सच पल्लै सच बखान है, सच कसवटी लावणिया। हों वारी जी ओ वारी, गुर की बाणी मन वसावणिया। अंजन माही निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मलावणिया। रहाव किस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अत अगम अपारा। गुरमुख हो ऐ सोई पाई, आपे बख्श मलावणिया। मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई, गुर प्रसादी सच चित लाई। सचो सच वरतै सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया। वे परवाह सच मेरा प्यारा, किल विख अवगुण काटन हारा। प्रेम प्रीत सदा त्याई, भै भाए भगत दृढ़ावणिया। तेरी भगत सच्ची जे

कै आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविद माया चौथी पौड़ी गुरमुखी उची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सहज समावे गुरमुख करनी सच्चे सेव है सच्चे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वै सो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब सरण तुम्हारी आपे धर देख कह।

महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलय किन चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चे

तुद सलाहे नारजा कबहू सच्चे नावै की भुख लावणिया एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत।

मन वसाई आंदिन सदा रह पै अंदर पै मार परम चुकावणिया परम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे परमे भूला।

सो पाई, गुर प्रसादी हो मैं जाई। नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चै सो बा पावणिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवियां वड्डी वड्याई। हर जी अचिंत वसै मन आई, हर जी ओ सफले ओ बिरख है अमृत। जिन पीता तिस तिखा लहावणिया, हों वारी जी ओ वारी। सच संगत मेल मनावणिया, हर सत संगत आपे मेले। गुर शब्दी हर गुण गावणिया, रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया। जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गुआई। दर सच्चै सो बा पावणिया, बिन गुर नाम ना पाया जाई। सिद्ध साधक रहे बिन लाई, बिन गुर सेवे सुख ना होवी। पूरै भाग गुर पावणिया, इहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखै। मूर्चा ना लागै जा हों मैं सुखै, अनहत बाणी निर्मल शब्द वजाई। गुर शब्दी सच समावणिया, बिन सतगुर के

गुरमुखो वैसो इकस सिंह निभलाए, दूजा भरम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वापारा, नाम निधान सच पावणिया, गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, आनंदन रंग रत्ता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया, सतगुर दाता मिले मिलाया, पूरे भाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वडियाई, हर सच्चे के गुण गावणिया, माज महला तीजा, आप मंझाए ता सब किछ पाई, गुर शब्दी सच्ची लिवलाई, सच वणंजह सच संग्रह।

मेरा शब्द वड़ियाई देवनिया रहाउ वेला वक़्त सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन पाया सच्चे सेवै सच वड़ियाई गुर कृपा ते सच पावनिया पाओ भोजन।

रात्रि विदमाया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार ना पावणिया, आपे रंगे रंग चढ़ाई, से जल राते गुर शब्द रंगाई, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया, गुरमुख रिद सिद्ध सच संयम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

सब किछ पाया। शब्द भेद कोई महल पाई, महले महल बनावणे आ। सच्चा साहु सच्चे बणजारी, सच बणज है गुर हेत अपारी। सच विहाज है सच कमावह, सचो सच कमावणे आ। बिन राशी को वत क्यों पाई, मनमुख भूले लोक सबाई। बिन राशी सब खाली चले, खाली जाए दुख पावणे आ। एक सच बणज है गुर शब्द प्यारी,

मूड़ा बाहर पाली, मनमुख अंधे फिर है बेताली। जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे, मनमुख परम भुलावणिया।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत न

अमृत हर बाणी सतगुर सेविया हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाई गुरमुख विरला कोई जन पाई अमृत पी सदा त्रिपतासी।

लाई। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझते बाहर किस ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बीचारा, अमृत भरे तेरे भंडारा।

निरंजन सुई जिन सिर जीत ने आपे गोई। नानक नाम संभाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए।

निश्चल निज घर वासा पावणिया। गुरु कै शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया। सचो सचा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाल है से वडभागी। सच्चा शब्द आप मलाई, सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओहो अगम अगोचर शब्द सुध होवे। अन दिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ था के शांत न आई, तृष्णा जाले सुध न काई। बिख विहाज है बिख मोह प्यासी, कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाणा। नानक एको नाम वरतै मन अंतर, गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरतै सब तेरे। मर मर जमै फिर पवै कनेरे, तू एको निकल अगम अपारा। गुरमति बूझ बुझावणिया, हौ वारी जियो वारी। राम नाम मन वसावणिया, किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई। गुरमति आप बुझा

निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहि समाणी। निर्मल बाणी हर सालाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हौ वारी जीओ वारी, सुखदाता मन वसावणिया। हर निर्मल गुर शब्द सलाही, शब्दो सुन तिसा मटावणिया। रहाउ निर्मल नाम वसिया मन आई, मन तन निर्मल माया मोह गुआई। निर्मल गुण गावै नित साचे की, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया। निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै, हौं मैं मैल गुर शब्दे धोवै। निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी, दर सच्चै सोभा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल

जुहया जमकाली माया मोह इस मनह नचाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई बाणी वज्जै शब्द बजाई गुरमुख भगत थाए पावनिया बहु ताल पूरे बाजे बजाई ना को सुने ना मन वसाई माया कारण पिड़ बंद नाचै दूजे पाए दुख पावनिया जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता इंद्री वस सच संयम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याई एहा भगत हर पावनिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाई गुर चरणी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सालाही सच्चे नाही दुख कब ही नाही सुख दाता सेवन सुख पाइन गुरमत मन वसावणिया हों वारी जीओ वारी सुख सहज समाद लगावणिया जो हर सेवह से सदा सोह है सुबा सुत सुहावणिया रहाउ सब को तेरा भगत कहाई से भगत तेरे मन पाई सच वाणी तुदै सालाहन रंग राते भगत करावणिया सब को सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिलै ता चूकै फेरा जा तुद भावै ता नाही रचावै तू आपे नाउ जपावणिया गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया इक सस्यों लिव लागी सदही हर नाम मन वसावणिया भगत रंग राते सदा तेरे चाई नौ निध नाम वसया मन आई पूरे भाग सतगुर पाया।

तै मलाई गुर शब्द मिलह से विछड़ह नाही सहजे सच समावणिया तुझते बाहर कछु ना होए तू कर कर वेखह जानह सोई।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे। हौं मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे। मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया। हौं वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। किन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई। पूरै भाग गुर सेवा होवै गुर सेवा ते सुख पावणिया। मर मर जीवै तां किछ पाई गुर प्रसादी हर मन वसाई। सदा मुकत हर मन वसाई सहजे सहज समावणिया। बहु कर्म कमावै मुक्त ना पाए देस अंतर भवै दूजै पाए खुआए। बिरथा जन्म गवाया कपती बिन शब्द है दुख पावणिया। धावत राखै ठाक रहाई गुर प्रसादी परम पद पाए। सतगुर आपे मेल मलाए मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए दूजै पाए बिरथा जन्म गवाए। आप डुबे सगले कुल डुबे कूड़ बोल बिख खावणिया। इस तन मह मन को गुरमुख देखै भाई भगत जा हूं मैं सुखै। सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाए तिन पी तन मह मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई होर के करे कीतै क्या होई। नानक जिस नाम देवै सो लेवै नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा इस गुफा मह अखुट भंडारा इस विच वसै हर अलख अपारा। आपे गुपत प्रगट है आपे गुर शब्दी आप मियावणिया। हौं वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणिया। अमृत नाम महारस मीठा गुरमती अमृत पी आवणिया। रहाओ हौं मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। बिन शब्द नाम ना पाए कोई गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन

हार दुख पाए मन मुखे अंधे सूझै नाही फिर घिर आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखै हौ मैं मैल जाए बैस सुखान सद हर गुण गावे।

दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुर पूरै भाग मलावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हों मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हों वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर

गुरमुख हर दर शोभा पाई, गुरमुख विचो आप गवाई, आप तरह कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सुवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हूं मैं चूकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज समावनिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रह दिन राती, गुरमुख शब्द करावनिया, गुरमुख अन दिन शब्द राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्द भगत करावनिया, बाज गुरु है अंध अंधारा, जम काल ग्रथे करह पुकारा, अनदिन रोगी बिस्ता के कीड़े, बिस्ता मह दुख पावनिया, गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय बुठा आप आई, नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुर ते पावनिया, माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तुन घट अंतर, आपे बणत बनावनिया, हों वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावनिया, बाज गुरु को सहज ना पाई।

हुई, जिस आप वखाले सो वेख कोई। नानक नाम वसै घट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ भरपूर रहिया सब थाई। गुर प्रसादी घर ही मह पाई, सदा सरेवी एक मन ध्याई।

कि नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया माज महला तीजा हर आपे मेले सेव कराए गुर।

सत सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाउ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेव है गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सू है, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हम मैं परम चुकाया। अन दिन नाम सलाहन रंग राती,

पढ़ बुझ मन वसावणिया गुरमुख पढ़ हर नाम सलाह है दर सच्चह सुबा पावणिया रहाउ अलक अपेयो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर भेटै नदरी मेल मनावणिया दूजै पाए पड़ै नहीं दूजै त्रेविद माया कारण लूजै त्रेविद बंधन टूटै गुरशब्दी गुरशब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वस न आवै दुबदा लागै दह दिस धावै बिख का कीड़ा बिख मैं राता बिख ही माही पचावणिया हौ हौ करे तै आप जनाई बहु कर्म करै किस थाए ना पाई तुझते बाहर किसु ना होवै बख्शे शब्द सुहावणिया उपजै पचै हर बूजै नाही अन दिन दूजै पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बनाई मन मुख आंधे ऐसे

शब्द पुछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावनिया सब मैं वरतै इको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सोहै कर किरपा आप मलावनिया माज महला तीजा मनमुख पढ़ै पंडित कहावै दूजै पाए महा दुख पावै बिख्या माते

गुर सेवा ते हर मन वसिया, हर रस सहज पी आवणिया रहाउ। वेद पढ़ है हर रस नहीं आया, वाद वखाण मोहे माया, अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया, अकथो कथी है शब्द सुहावे, गुरमती मन सचो पावे, सचो सच रवह दिन राती, इहो मन सच रंगा मणिया, जो सच रत्ते

जीवत मरे गुर शब्द बिचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरा सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा घट चानने आप पछानणिया आप अपाए तै आपे वेखै सतगुर सेवै सो जन लेखै नानक नाम वसै घट अंतर गुर किरपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया त्रै गुण दिसह मोहे माया।

मोह जलाई सो हर सिउ चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ। देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुरपूरै नाम त्यावणिया पे अड़ै धन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपनै सुख ना पावणिया पे अड़ै धन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले पिरकै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चेतना आवे बिन नावे बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिले शब्द पछाणे नानक नाम मिलया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपरिया।

सर्ब निवासी सबना कह मन पावनिया साचा साहिब गुरमुख जापे पूरे गुर कै शब्द संजापे जिन पिया से त्रिपतासी सच्चे सच अगामणिया तिस कर सहजा सोई सोहेला अनद बनोद करे सद केला सो तनवंता।

आज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता कौन सो गृही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए लियो किन बिद बादा किन बिद छूटा किन बिद आवण जावण टूटा कौन कर्म कौन निहकर्मा कौन सो कह कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिया किन बिद बिछरे एह बिद कौन प्रगताए जियो कौन सो अखर जित धावत रहता कौन अपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याई किन बिद कीर्तन गाए जियो गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता तन गिरहि उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो हउमै बादा गुरमुख छूटा गुरमुख आवण जावण टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा गुरमुख करे सो सुपाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख विछरे गुरमुख बिद प्रगटाए जियो गुरमुख अखर जित तावत रहता गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याय गुरमुख कीर्तन गाए जियो सगली बणत बणाई आपे आपे करे कराए थापे इकस ते होयो आनंता नानक एकस माहे समाए जियो माज महला पंजवा प्रभ अबनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

कर कृपा दास नदर निहाली गुण गावह पूर्ण अबनासी कह सुन तोट ना आवनिया एथे उथे तू है रखवाला मात गर्भ मह तुम ही पाला माया अग्न ना पोहै तिनको रंग रते गुण गावनिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर ना जाननिया जिसको तू प्रभ पया सहाई।

ऊंच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवा कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनहु विसारी है, रहाओ संता संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है, तोसा हर का नाम लै, तेरे कुलह ना लागे गाल जियो, जो सिमरन दे साई है, नरक ना से पाई है, तत्ती वाओ ना लग गई, जिन मन बुठाया जियो, से सुंदर सोहने साध

माज महला पंजवा कर तीजा हर जप जपे मन धीरे रहाउ सिमर सिमर गुरदेव मिट गए भय दूरे सरन आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे झूरे चरण सेव संत साधके सगल मनोरथ पूरे घट घट एक वरतदा जल थल महियल पूरे पाप बनासन सेविया पवित्र संतन की तूरे सब छडाई खसम आप हर जप भई ठरूरे करतै किया तपावसो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रत्ता सच नाए हर वेखै सदा हजूरे।

कमलावती उपजह नाही दाम। हर लाह न मिलिए साजन है कत पाइय विश्राम। जित घर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से ग्राम। सरब शिंगार तंबोल रस सण दे सब खाम।

जिसका निह चल ताम चेत गोविंद अरादी है हुए आनंद घना संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आई तिसह गणा एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मई अल पूरिया रव्या विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाई लगा वैसाख तीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओ पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो वसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो परापत होए वैसाख सुहावा तां लगे जा संत भेटै हर सोए हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन हर सज्जन दावन

जेठ रंगीला तिस धनी जिस कह भाग मथन असाड़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुइये भाइव गुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणै मथै जो लिखियास रैण मिहाणी पछताणी उठ चली गई निरास जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ावया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरत पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हों तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उरा।

मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावे माय संत सहाई प्रेम के हों किन कै लागा पाए बिन प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी ना ही जाए जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए आप त्याग बिनती करह लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह ना जाए।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरो वह रोज कीता किशु ना हो वही लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कतक हो।

तिनकी शोभा क्या गणी, जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सही लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राई सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई मिल

लाख बेरियां। हर सज्जन अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पैया। पोख सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह। माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान। हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान। जन्म कर्म मल उतरे।

सी पोरो हुए पचासी पग खिसे सठी के बोडे पायावे सत्तर का मतहीन असीहा का व्यवहार ना पावे नवे का सिह जासनी मूल ना जाने आप बाल टंडो लिम टूंडम डिठ मैं नानक जग तू का तबल हार पौड़ी तू करता पुरख अगम है आप शिष्ट अपाती रंग परंग अपार जना बहो बहो विध भांति तू जान है जिन अपाई है सब खेल तमाती एक आव है एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बधाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद त्याई दे मेरे सच्चिया बल बल हो तिन जाती सलोक।

कर्म कमावे सो चहो कुंडी जानिए, जो धर्म कमावे तिस धर्म नाउ होवे, पाप कमाणे पापी जानिए, तू आपे खेल करह सब करती, क्या दूजा आख बखानी है, जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणी है, नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगड़ सुजानी है, पौड़ी तुदे आपे जगत अपाए कै, तुदे आपे तंदे लाया, मोह ठगौली पाए कै, तुदे आप हो जगत खोआया, जिसना अंदर अग्न है, नह तिपतै भुखा त्याया, सहसा एहो संसार है, मर जम्मै आया जाया, बिन सतगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया, गुरमति नाम त्याई है, सुख रज्जा जां तुद पाया, कुल उधारे अपना धन जने दी माया, सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया, सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना, विन कन्ना सुनना पैरां बाजो चलना, विन हत्थां करना जीबै बाजो बोलना।

भोग मेल मलाया, तिन्ही किया बजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया, हरख हो सोग बजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया, सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चले चलाया। श्लोक महला पहला, कूड़ बोल मुरदार खाई, अवरी नो समझावन जाई, मुठा आप महाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा, जिसदे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाई, ओह हर मार्ग आप चलदा, होर नानू हर मार्ग पाई, जे अगे तीर्थ होए ता मल लह, छप्पड़ नाथै सगवी मल लाई, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम ते आई, ओह आप छुट्टा कुटंब सियो, दे हर हर नाम सब सृष्ट छडाई, जन नानक तिस बलिहार ने, जो आप जपै अवरा नाम जपाई। पौड़ी, एक कंद मूल चुन खाहे वन खंड वासा, एक भगवा वेश कर फिर है जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा, बिरथा जन्म गवाई ना गिरही ना उदासा, जम काल सिर हो ना उतरे त्रे विद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवै दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन घर ही माहे उदासा, नानक सतगुर सेवने अपना से आसा ते निरासा। श्लोक महला पहला, जे रत लगे कप

कहया कथना भरिया पर पर धुआ आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू हुआ नानक अंधा हुए कै दसीरा है सब समहाए साथ है अग्गे गया मुहे मुह पाई।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माही निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावै पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां हो वह तीनवा सोम हो वह दुध कीयो सगली धरती सक्कर हो वह खुशी करे नित जीयो।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

आस पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास। कुत्ते चंदन लाई है पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाई है भरी है सिमरत पाठ। अंधा चानन रखी है जीवे बल है पचास, चौने सोयना पाई है चुन चुन खावे कास। लोहा मारन पाई है कह ना हुए कपास।

मेरबद बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही एक तू ही महला पहला। ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक जिगर कोई, एक तुई एक तुई महला पहला। ना दादे देहां दे आदमी, ना सपत जेर जिमी, अस्त एक जिगर कोई, एक तुई महला पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई, एक तुई महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला। परंदे ना ग्रहा जर, दरख्त आब आस कर, देहांद सुई एक तुई महला पहला। नानक ललार लिखिया सोई।

गुरमुख जानिया, गुरमति आप दुआए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मनमुख सदा कूड़ियार परम फलानिया, विस्ता अंदर वास साधना जानिया, बिनमावें दुख पाए आमन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला, सिंहा बाजा चरगा।

देखाले खली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार लग जन्म गवाई है विण नावे सब विस पेंजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाहे पत सिंह जाई है सलोक महला पहला तुद भावे ता वावह गावह तुद भावै जल नावै जां तुद

जां तुद भावै ता होवै राजे, रस कस बहुत कमावै। जां तुद भावै तेग भगावै, सिर मुंडी कट जावै। जां तुद भावै जाहे दसंतर, सुन गल्लां घर आवै। जां तुद भावै नाहिर चावै, तुद पाणी तू भावै। नानक एक कह बेनंती, होर सगले कूड़ कमावै। महला पहला, जां तू वड्डा सब वडियाईया, चंगा चंगा होई। जां तू सच्चा तां सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात। हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है। सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है। मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दै दर जाए सच चवाई है। सच्चा अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सचियार सच समाई है। श्लोक महला पहला, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया। हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरै राहो ना कोई। विच हों मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बिदगत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। जिसनो नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी, भगतां तै संसारियां, जोड़ कदे ना आया। करता आप अभुल है, ना भुलै किसै दा भुलाया।

बोल बोल बेख खाया चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अन दिन नाम त्याया दासन दास होए कै जिन्नी विचों आप गवाया ओना खसमै कै दर मुख उजले सच्चै शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सलाह जिनी त्याया इक मन से पूरे साह वक्त उपर लड़ मोए दूजे बहुते राह मन किया मती खिंदिया बहुत पए असगाह गोते खाहे ना निकलह तीजे मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकिया खादा हुए सुआह पी खाने स्यों दोस्ती चौथे आई ऊंग अखी मीट पवार गया पी उठ रच्यो नवाद सह भरिया की पिड़ बद्दी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन बसै सच्चा नावन होए।

पूरा जे करे कटै नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हो मैं जाई है लइयन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर इस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्मवंती सालाया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सबह कै सुरतिया उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उतै अमृत वंडी है कर्मी हुए पसाव कंचन काया कसी है।

लिखवाइए, सच्चा शब्द निशान ठाक ना पाइए, सच सुन बुझ बखान महल बुलाइए, सलूक महला पहला पहरा अगन हिवै कर बाधा, भोजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा, धरती हाक चलाई तारत राजी अंबर तोली, पिछे टंक चढ़ाई एवड वद्दा मावा नाही, सबसे नत चलाई ईता तान हुआ मन अंदर, करी पे आख कराई जेवड साहेब तेवड दाती, दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिसे उपर, सच नाम वडियाई महला दूजा, आखने आख ना रजिया सुनन ना रजे कान, अखी देख ना रजिया गुण गाहक एक वन, भुखियां भुख ना उतरे गली भुख ना जाए, नानक भुखा तां रजे जां गुण कह गुणी समाए, पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है, बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है, बिन सच्चे तन शार शार रलाई है, बिन सच्चे सब

ठगियो ठग आइय जाइय तन मह तृष्णा यग शब्द बुझाइय सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के सा

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिय पाई है। गुर प्रसादी बुज सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन कर्मा बाहरी महला पहला, मत पंखे रू किरत साथ। कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत। नानक हुक्म चलाई है।

खट दर्शन कह भेख किसे सच समावना सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना मन्ने नाउ बसंख दरगाह पावना खालक कौ आदेश ताडी जावना नानक।

मूल जान गल्लां करे हान लाए हान लभ ना चली सच रहै सो विष्ट परवान सर संदे आगास को क्यों पहुंचे बाण अगै ओह अगम है वाहे दर जान पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम शिंगारिया करन भगत दिन रात ना रहनी वारिया महला मांज नवास शब्द सवारिया सच कहन अरदास से वेचारिया सोहन कसम पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया शब्द सवारी आस अमृत पीविया।

तृप्तिया सायर परेत सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेह पलंग तस जन्मस

नानक बख्शे बख्शी है, नाहे ता पाही पाहे। महला पहला। नानक बोलन चखना, दुख छड मंगी है सुख, सुख दुख दुए दर कपड़े। पहर है जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है, तिथे चंगी चुप पौड़ी। चारे कुंडा देख अंदर पालिया, सच्चे पुरख अलख सिरज निहालिया। उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया, सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया। पाया रतन कराह दीवा बालिया, सच्चा शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया। ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया, नाम भुला जग फिर बेतालिया। सलोक महला तीजा, पै विच जमै पै मरे, पी पौ मन मह होए। नानक पै विच जे मरे, सहला आया सोए। महला तीजा, पै विण जीवै बहुत बहुत, खुशियां खुशी कमाए। नानक पै विण जे मरे, मुहे काल उठ जाए। पौड़ी। सतगुरु हुए दयाल ता शरदा पूरी है, सतगुरु हुए दयाल ना कबहू झूरी है। सतगुरु हुए दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुरु हुए दयाल ता हर रंग माणी है। सतगुरु हुए दयाल ता जम का डर केहा, सतगुरु हुए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुरु हुए दयाल ता नव निध पाईऐ, सतगुरु हुए दयाल ता सच समाईऐ। सलोक महला पहला। सिर खुहाए पीयह मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही। फूल फदीहत मुहे लैन पड़ासा, पानी देख सगाही। भेडां वांगी सिर खोहायन, भरियन हथ सुआही। माऊ पीऊ किरत गवायन, टब्बर रोवन ताही। ऊना पिंड ना पत्तल, किरिया ना दीवा, मुए एक थाऊ पाही। अठसठ तीरथ देन ना ढोई, ब्रह्म

चढ़ सुआया, नानक मंगह दान जो तुद पाया। सलोक महला दूजा, दीख्या आंख बुझाया, सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है। जिन गुर नानक देव महला पहला, आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे। कह कह कतन

बुलाया, सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम पूजन आया, गुरमति खादा राज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया, शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला, चौपदे दुपदे

ना डूबै तरै, जिन किश किया सो किश करै, हुक्मे आवै हुक्मे जाए, आगे पाछै हुक्म समाए, हंस हेत आसा समान।

नानक आखण बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किछ कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भए करनी कामन कर मन लए साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महल।

तत तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रह आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊ आप।

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द बीचार छुटे हर नाई। तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश। सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट। बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट। साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्ये पूरे हर लोग। मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए। गौड़ी महला पहला, काम क्रोध मा

कुंडा पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया मन दोए।

मन मानिए अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरण मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कार करते जानिया जत सत।

उठाऊं। नानक गुरमत सहज समाऊं। गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप

सतगुर मिलै तदुबदा भागै कमल बगास मन हर प्रभ लागै जीवत मरै महारस आगै सतगुर मिलै सच संयम सूचा गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा कर्म मिलै जम का भौ मूचा गुर मिलै मिल अंक समाया कर कृपा कर महल दिखाया नानक हौ मैं मार मलाया गौड़ी महला पहला।

तोट नाही तुद भगत भंडार, किया गर्भ न आवे रास, जियो पिंड सब तेरे पास, तू मार जीवा नह बख्श मलाई।

गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वडियाई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अपयो पी आया अन पै बिसरे नाम समाया क्या डरिए डर डर है समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुभाए मिले साबास जाहे सवारे सांझ बयाल इत उत मन मुख बांधे काल अहनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले ब्रह्म दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे त्रै गुण हितकार चारे वेद कथ है आकार तीन अवस्था कह बखियान तुरियावस्था सतगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुर जन्म ना हुए है मरना रहाउ चार पदार्थ कह सब कोई सिमरत सासत पंडित मुख सोई बिन गुर अर्थ विचार ना पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जा कै हृदय बसया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माही निरास बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एहु संसारु लब लोभ मुझ कूड़ कमावे बहुत उठावे पारू तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों धारी उपर शारू सुन सुन सिख हमारी सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े बहुड़ ना आवे वारी रहाऊ।

तना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामन लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पा

तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आ।

केते पशु अपाई, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देख पिछों देख तुझते कहां छुपावे, तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह

ता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ होए।

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन बसा कंद मूल चुन खाऊ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हों जाऊं जियो मैं बनजार नाम की तेरा नाम बखर वापार जी रहाउ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले दर्श

आए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचारु तित कर गाव हो सोहिला शिवर हो सिरजनहारु तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हों बारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होए साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन राग गौड़ी गवार री महला तीजा चौपदी।

ले शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई कह रात कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

जो पांडा हुए ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी ग्वारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुरु पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैं गल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हों मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हों मैं विच सब जग बहुराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हों मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

समाना जित सेवे दरगाह पत परवाना हर के नाम बिटो बल जाऊं तू विसरह तब ही मर जाऊं रहाओ तिन तू विसरह जे तुदे आप भुलाई तिन तू विसरह जे दूजे पाई मनमुख अज्ञानी जोनी पाई जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाई जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाई गुरमति हर नाम समाई जिन्ना पोतै पुन से ज्ञान बिचारी जिन्ना पोतै पुन तिन हऊ मैं मारी नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी गौड़ी ग्वारी महला तीजा तू अकथ क्यों कथिया जाई गुर शब्द मारन।

साई गुरमुख भगत हर नाम समाई आपे दात करे दातार पूरे सतगुर सिउं लगे प्यार नानक नाम रते तिन कहो जयकार गौड़ी ग्वारी महला तीजा।

ते बूझै जन कोई रहाउ। असंत अनारी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस युग में राम नाम निस्तारा। बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उधारा। इस

नाम जप हो पवजन उत्तर हो पार रहाओ परमे आवे परमे जाए एहो जग जन्मया दूजे पाए मन मुख ना चेतै आवे जाए आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया किरपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

बिन नावै त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण। जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फरा।

क्या ओए कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही।

महला तीजा सब जग काल बस है बांधा दूजे पाई हम मैं कर्म कमावंदी मन मुख मिले सुजाई मेरे मन गुरचरणी चित लाए गुरमुख नाम निदान लै दरगाह लै छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन हठिया वै जाय गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आई अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हम मैं तजे विकार जन नानक करमी पाईन हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागन महला तीजा पेयड़ दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव कड़ै गुण संभल सोहरे वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससुरह पेयै पिर वसै कहो कित बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे मेलाइय रहाओ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आईऐ वड भागी सतगुर मिलै मुख अमृत पाईऐ हम मैं दुबदा बिर सजाए सहजे सुख समाईऐ सब आपे आप वरतदा आपे नाए लाईऐ मन मुख गर्ब ना पायो अज्ञान ज्ञानी सतगुर सेवा ना करह फिर पछताणी गर्भ जूनी वास पाए दे गर्भे गल जानी मेरे करते एवं भावदा मन मुख परमाणी मेरे हर प्रभ लेख लखाया तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंद पबीरा हर हर बख्श मलाए प्रभु जन नानक कीरा गौड़ी बैरागन महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बीचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम मरारा शिव सकत मटाईया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईऐ संत जन हो जिस देख हों जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मेले हो हर रस पीवा रहाओ हों हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुणदाता हर राय है हम अवगण यारे पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारी तू गुणदाता निर्मला हम अवगण यारी हर शरणागत राख लेओ मूढ़ मुग्ध निस्तारी सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया धार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगै धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआर री महला चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे कर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी।

अल्लाह चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पाज मिल साधु संगत जन की तार पौ जल कथ कथा सुन हर की गोविंद सत संगत मिलाई हर रस रसना राम गुण गाए रहाउ जो जन त्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहु हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे संत जना स्यों प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखे।

जहां हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे।

अन्न खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, कर कृपा लोचपुर हमारी। रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारी सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिगसै देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सब प्रीत माया मोह काचा, बिन सजाए पूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी गुआररी महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम त्याया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई। रहाओ जब गुर मिलया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अन दिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड ते आगे हर लिब लाई, ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल भदर गुर पग लग त्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे, गौड़ी गुआररी महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रव रहया बनवारी, हर आपे तप तापै लाए तारी, ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर। रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे, हर आपे वेखै विगसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारिंग अमृत तारा, हर अमृत आप पिया मनहारा।

बणंजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बणजारे राम के हर वणज करावे दे रासरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझह वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लग है जा हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढ़ाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी ग्वार भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोते उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम सुमाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंद है कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचे बहु भांत कर माया कहताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

था। हमरे मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्स तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरे मन चित हर बहुत प्यारा, हौ कुर्बानी गुरे अपनी, जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजना।

बार बार हर गणत ना आवे, तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे, हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे, तुमरे गुण क्या कहां मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए, हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए, तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।

चौथा कंचन नारी मह जियो लुभत है मोह मीठा माया कर मंदर घोड़े खुशी मन अन रस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्शे अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नहीं किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोले गुण विहून नाम।

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हौ कर जानी सब कीता तेरा वरतदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख दे ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हिरदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जान हो मास काती कह किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर लय छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हों खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिये टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िये जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरे हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते
जन नानक नाम लए ता जीवै, हर जपियै हर कृपा ते, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, करहो कृपा जग जीवन दाते, मेरा मन हर से तीराचे, सतगुर बचन दियो अत निर्मल, जप हर हर हर मन माचे, राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे, जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसया, गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे, रहा जिनको प्रीत नाही हर सेती, ते साकत मूड नर काचे, तिनको जन्म मरण अत भारी, विच विस्ता मर मर पाचे, तुम दयाल सरन प्रतपालक, मोको दीजै दान हर हम जाचे, हर के दास दास हम कीजै, मन निरत करे कर नाचे, आपे साहा बड़े प्रभु स्वामी, हम बन जारे हैं ताचे, मेरा मन तन जियो रास सब तेरे, जन नानक के साहा प्रभ साचे, गौड़ी पूर्वे महला चौथा, तुम दयाल सर्व दुख पंजन,

हम सतगुर पार ब्रह्म कर मानी, हम मूढ़ मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जानी रहाऊ, जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकानी, हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गानी, जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते साकत मूढ़ देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कित्ते हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाव, मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवे निज कर वसीऐ, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ, मेरे मन हर हर हर हर हर जासे उत्तम, लै लाहा हर मन हसीऐ, हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ, मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिऐ,

है लेखा छुट्टी है। जन नानक हर प्रभ पूरे किए, खिन मासा तोल ना कटिए। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे। मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करहो हर दर्श दिखावहु। मेरे मन तन लोच कनेरी, राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी। गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलया आए प्रभ मेरी रहाओ। जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी। अन दिन नाम जपी सुख पाई।

हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़ी पर उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़ी जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कशु ना जान है आगे ज्यो हर राख है त्यों ठाडी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाओ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

हर अग में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा नेहियर है, तिन आग है आन परीठा, मन मुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कहो बहु दूध पी आई है, बिक निकसै फोल फलीठा, हर प्रभ आन मलाव गुर साधु, कस गरुड़ शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया, पूरे गुर कह आगे, सतगुर दाते नाम दड़ाया, मुख मस्तक भाग सुभागी, राम गुरमत हर लिव लागे रहाउ, कट कट रमैया रमत राम राय, गुर शब्द गुरु लिव लागे, हो मन तन देवो काट गुरु कहो, मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागे, अंधियारै दीप ज्ञान जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ, कर वस्त लही मन जागे, साकत बदक माया तारी, इन जम जो हन लागे, हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया, वे आवह जाहे अपागी, हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मांगे, जन नानक की लाज पात गुरु है, सिर बेचे हो सतगुर आगे, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मात

गुर कै बचन हर पाया रहाउ। मेरा हियरै प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे, जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया। सहज आनंद भया।

अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै शब्द अनाहद, गुरमत

एक राजे तख्त बह नित सुखिये एक ना भिख मगाया जियो सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही।

हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसां पूरियां मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वाधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विटड़ो हो सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर विष्ट

हर आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाए दा मेरे गोविंदा हर आप खेलै बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाए दा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है।

हर कथा मंग है हर चंगी जीओ, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जीओ, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। राव रहया नहीं दूरी जीओ, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया परपूरी जीओ, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जीओ, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजे जीओ, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जीओ, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजे जीओ, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध का जय जीओ, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नाम मैं हर बिरहो लगाई जीओ, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जीओ। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीओ, मेरा नाम सखा हर पाई जीओ। गुण गावो संत जीओ, मेरे हर प्रभ केरे जीओ। जप गुरमुख नाम जीओ, भाग वडेरे जीओ। हर हर नाम जीओ, प्राण हर मेरे जीओ। फिर बहुड़ ना पवजल फेरे जीओ, क्यों हर प्रभ वेखा। मेरा मन तन चाओ जीओ, हर मेलो संत जीओ। मन लगा पाओ जीओ, गुर शब्दी पाईए हर प्रीतम राव जीओ। वड भागी जप नाओ जीओ, मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जीओ। हर मेलो संत जीओ, गोविंद प्रभ पासा जीओ। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जीओ, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जीओ। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जीओ। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जीओ, मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा।

तम मित्र हर पुरख सुजान जियो, गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो। हौ नाम बिटहो कुरबान जियो, हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो। हर दसहु संतो जी हर।

सास गरासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवां तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

आज कर कृपा राखै आप लाज, क्या मनुख कहो क्या जोर, झूठा माया का सब छोर, करन करावन हार स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, सर्व सुखा सुख साचाए, गुरु उपदेश मने महलेउ, जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वडभागी, गौड़ी गुआरवी महला पंजवा, सुन हर कथा अतारी मैल, महापनीत पये सुख सैल, वड्डे भाग पाया साध संग, पार ब्रह्म सिउ लागी।

सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लाख खरे।

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, जोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, तामह मन संतोख न पाया। तख्त सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला पर पंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख इहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाइए, कहो नानक वड भागी पाइए। जा कै हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवा, प्राणी जाने एहो तन मेरा। बहुर बहुर वाहू लपटेरा, पुत्र कलत्र गिरस्त का पासा। होर ना पाइए राम के दासा, कमन सो बिद जित राम गुण गाए। कमन सो मत जित तरे एह माए। रहाउ जो पालाई सो बुरा जाने, साच कह सो बिखे समाने। जाने नाही जीत अरहार, इहो अलेवा साकत संसार। जो हलाहल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग कह नाही नेर, लख चौरासी ब्रह्मता पेर। एकै जाल फहाए पंखी, रस रस भोग करह बहुरंगी। कहो नानक जिस पये कृपाल, गुरपुरे ताके काटे जाल। गौड़ी गुआरवी महला पंजवा, तौ कृपा ते मार्ग पाई है। प्रभ कृपा ते नाम ते आई है, प्रभ कृपा ते

गुण गाओ। निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन न सुनिए कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए। आठ पहर जिहवे आराद, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह। नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी। रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जै, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै। तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार। गौड़ी महला पंजवां गवारी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा। ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन। हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे। रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार। एको बनज एको व्यवहारी, अवर न जान है बिन निरंकारी। हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते। दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते। संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो। पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत। तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

बसना। निरपो नाम जपूं तेरा रसना। तू मेरी नावनिद तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तने अंतर तू ही त्याया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार। व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु परकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी रहाउ। व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता। व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा। व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार। व्यापत कर्म करे हों फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा। विचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब किस व्यापत बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ता को कहां व्यापे माय। कहो नानक जिन तूर संत पाई, ता कै निकट न आवै माई। गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब स्याणप ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते,

कै रंग सो जागै जिस प्रभ कृपाल एह पूंजी साबत धन माल रहाओ दूजा गौड़ी गुआरी महला पंजवा जाकै वस खान सुल्तान जाकै वस है सगल जहान जाका किया सब किश होए तिसते बाहर ना ही कोए कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे देन बाहे रहाओ सब ते ऊंच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्ब व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी गुआरी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेट तह मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच महराती शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद कृपा निध कृपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआरी महला पंजवा साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभमान भये निर्वैर आठ पैर पूजो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुर मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु की।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवां जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पवो काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशना।

कहो नानक कहो तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना। कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस सियो नेह रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना। दोहां सनिया का कसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वार वी महला पंजवा कल युग मह मिल आए संयोग। जिचर आ गया तिचर भोगह भोग जलै न पाइए राम स्नेही। किरत संयोग सती उठ होई रहाव। देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइए। सील संयम प्रिय आग्या माने तिस नारी को दुख ना जमाने। कहो नानक जिन प्रियो परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगाह परवानिया। गौड़ी ग्वारी महला पंजवा हम तनवंत भागठ सच।

अमोल, परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट न आवे वद दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लियार लाए, गौड़ी महला पंजवां, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका देखिया भरपूर, सतगुरे अपने कौ बलिहार, छोड़ न जाई सर पर तारे रहाव, दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम, बुरा भला कोई ना कही जय, छोड़ मान हर चरण गही जय, कहो नानक गुर मंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार, गौड़ी महला पंजवां, जांका मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया, जां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम तां का भागी रहाउ, जां कहो रस हर रस है आयु, सो अन रस नाही लपटायु, जा का कहया दरगाह चले, सो किसको नदर ले आवे तले, जां का

कह सगल निदहना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किने बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसलह पुंचा रहा अनहत बाणी थान निराला ता की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा अरादो कवन योग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म री जावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित पव जल तरो कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम हमे मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा।

सेव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावै गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करै सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पए समरथ अंगा।

हर कै मार्ग पतत पनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक, कर्णहार सद वसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत कै संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सबे कंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय ले संचा, कहो नानक जाका पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल परगासै, हर सिमरत त्रास सब नासै, सामत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे रहाव, साध संग पाइय निदनामा, साध संग

मुखार हर बोले सो जन इत उत कत है ना डोले जां कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसा जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया। गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नामो धन नामो व्यवहार नाम वडाई जन सोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ। नाम भगत कै सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम सुमारे कहो नानक जिस पूरा भाग नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवां संत प्रसाद हर नाम ते आया तब ते तावत।

साद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरन आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया।

सिमरन की बरिया, सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ। नेतर संतन का दर्शन पेख, प्रभ अवनासी मन मह लेख। सुन कीर्तन साध पह जाए, जन्म मरण की त्रास मटाए। चरण कमल ठाकुर उरतार, दलाब दे नानक निस्तार। गौड़ी महला पंजवा, जाको अपनी कृपा धारे। सोजन रसना नाम उचारे, हर बिसरत सहसा दुख व्यापे। सिमरत नाम परम पौ भागै।

पहले करत जन सोहै ता कौ माया अग्न ना पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजिया ले।

आई। गुर पूरे जब कृपा करी, पंथ नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पंजवां, अनक रसा खाई जैसी ढोर,

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण गाय।

रात पूरे गुड़ काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस भेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवां साध संग तां की सरनी परो मन तन अपना आगै धरो अमृत नाम पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ ताज अवमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मन सुमाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ता की चरणी लाग गौड़ी महला पंजवा सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले गौड़ी महला पंजवा ताप गए पाई प्रभ शांत शीतल पय कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते पय सोहेले जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ सगल रोग का बिनसे आथाओ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित भेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला कहो हौ बल जाओ जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे।

कर हर हर अखर मन मह लेख रव रहे आ सरबत स्वामी गुण गावे नानके अंतर जामी गौड़ी महला पंजवां पै मह रचियो सब संसारा तिस भउ नाहीं जिस नाम आधारा।

नाऊ, तुमरी कृपा ते दरगाह थाऊ, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ, तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास, गौड़ी महला पंजवां, तन बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपहु नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग, परत विहून

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समाणा, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवा, ताका दर्श पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाव, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देहे होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवा, गुरजी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म हुए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवा, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवा, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, संत है संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द भ्रमता का भागा, हर धन को वापारी पूरा, जिसह

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस सिंह आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लाग है कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुबा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जाने है स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मन लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कैर दसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरे हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरता कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी बडियाई

मुक्त फल पाए। उक्त सियानप इससे कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाहि। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइए। पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ, हर के चरण हृदय उरतार। भव सागर चढ़ उतरह पार, साधु संग करहो सब कोय। सदा कल्याण फिर दुख ना होए, प्रेम भगत भज गुणी निदान। नानक दरगाह पाई है मान, गौड़ी महला पंजवा। जल थल महियल पूर्ण हर मीत, प्रम बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास,

नानक प्रभ राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मज्जन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाव हर के चरण हृदय मह बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो बिख संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ सरनाई जिन हर जाति मन तन शीतल चरण हर राति पै भंजन प्रभ मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाव जां कै हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास।

के किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रव्या परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान, गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दोए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार। अपने दास को रखनहार रहाउ, आद जगाद प्रगट प्रताप। निंदक मुआ उपज वद ताप, तिन मारिया जे रखे न कोए। आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए। शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाउ। साची दरगाह बोले कूड़, सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़। रोग व्यापे कर दे पाप, अदली होए बैठा प्रभ आप। अपन कमाए आपे बांधे, दर्ब गया सब जी कै साथे। नानक शरण परे दरबार, राखी पैज मेरे करतार। गौड़ी महला पंजवा, जन की धूर मन मीठ खटानी। पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाउ। अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुद मन जाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुद न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया भउ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाउ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवां, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जमकी नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागै, हर संग राता अन दिन जागै, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाव, नेत्र पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवां, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन बसेओ हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिहु मन माने, अगाध बोध हर अग्न अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा धुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, तांते बिरता ना व्यापै काई रहाव, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लेहो अंगुरिया रहाओ। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीना नाथ अनाथ करना में, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दई गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो रहाओ। तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुखदातिया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्त हो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला, कवन विधि विचार। सरल समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न भये केसवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंधपो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रोहोए के, संत के घर महला पंजवां।

हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से बड़ भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

रास गौड़ी महला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्स सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मुहे मार्ग दे बताई रहा अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले वह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास हुए आयो कै पै करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुनोसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्तै तत मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सरै नार।

आगह बसन सुहेला यह संसार विकार सहसी मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाज हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पाव हो सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला।

राखु राखन हारी खेद करह और बहुत संताव है। आयु शरण तुहारी कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निरपहु गुर का शब्द कमाया। जीत लये ओए महा बिखादी सहज सुहिली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपौ संग तुम्हारे बसते

मन की आसा, गुर भेट्यो हर रंगा, नाम खजाना भगती पाया, मन तन तृप्त अगाए, नानक हर जियो तां को देवे, जां को हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवां, दया मया कर प्राण पत मोरी, मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी, अंध कूप मह हाथ दे राखो, पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ। कर्म करावन सब किश तुम ही, तुम समरथ नाही अनहोरी, तुमरी गातमित तुम ही जानी, से सेवक जिन भाग मथोरी, अपने सेवक संग तुम प्रभराती, ओत पोत भगतन संग जोरी, प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी, राम संत मह भेद किछ नाही, एक जन कई मह लाख करोरी, जा कहिय प्रगट प्रभ होआ, आनंदन कीर्तन रसन रमोरी, तुम समरथ अपार अति ऊचे, सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी, नानक को प्रभ की जय कृपा, उन संतन कै संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवां, तुम हर से तीराते संत हो, नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते, ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ, तुमरा मर्म तुमा ही जानिया, तुम पूर्ण पुरख बधाते, राखो सरन अनाथ दीन को, करहो हमारी गाते, तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी पांते, कर कृपा जिस राखो संगे, ते पार पुराते, ईत ऊत प्रभ तुम समरथा, सब किस तुमरे हाथे, ऐसा निदान देहो मोको, हर जन चले हमारे साथे, निर्गुण यारे को गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवां, सहज समायो देव, मोको सतगुर भये दयाल देव रहाओ, काट जेवरे कियो दासरु, संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरह दिखायो, पयो प्रगास सर्व उजियारा, गुर ज्ञान मनह प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अनपह ठहरायो, मान आग्या सर्व सुख पाए, दुखा ठाउ गवायो, जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर, सब आनंद रूप दिखायो, ना किस आवत ना किस जावत, सब खेल कियो हर रायो, कहो नानक अगम अगम है ठाकुर, भगत टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवां, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, मन ता कियो टगी जैरे, जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर, ताको नाम जपी जैरे रहाओ, मन की मत त्याग हो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाई रे, जो प्रभ करे सोई पल मानो, सुख दुख योही त्याई रे, कोट पतत उधारी खिन में, करते बार ना लागे रे, दीन दर्द दुख पंजन स्वामी,

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखे पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन में जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूढ़ नंग।

गौड़ी महल्ला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महल्ला पंजवा जी अरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नू तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महल्ला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव करन करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महल्ला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान भय पीत चीन राम सेवक भय रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहु मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महल्ला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है सास सास हर त्याई है रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है जां को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अग्न ते नानक को प्रभ मया कर मेरा मन तन वासै नाम हर गौड़ी महल्ला पंजवा रसना जपिया एक नाम इहां सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम रहाओ कटिया तेरा अहं रोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग हर रस जिन जन चाखिया ता की तृष्णा लाथिया हर विश्राम निध पाया सो बहुर न कत ही ताया हर हर नाम जां को गुर दिया नानक ता का पहो गया गौड़ी महल्ला पंजवा जां को बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव जां को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कै कर तल नव निध सिद्ध जो जान है हर प्रभ धनी किस नाही ता कै कमी करने हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर धन जां कै ग्रह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै गौड़ी महल्ला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो रहाव बेबरजत बेद संतना वाहू स्यो रे हितनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग कृपा निध मैं

खसम हमारा, खिन मह साज सवार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, शरण परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजो।

है कोई ऐसा हूं मैं तुरे इस मीठी ते एहो मन हो रहा अज्ञानी मनुख भया जो नाही सो नोरे रैण अंधारी कारिया कमल जुगत जित पूरे प्रम तो हारिया अनक विधि कर टोरे कहो नानक कृपा पही साध संगत निद मोरे गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करना मई रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जाकै सिमरन सुख पई अकाल पुरख अगाध बोध सुंत जसो कोट अग खई कृपा निद प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लई गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए जान दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाय रहाव एक रैन के पहुन तुम आए बहु जुग आस बंधाए ग्रह मंदर संपै जो दिसे ज्यों तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलक सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर खिन मह होत पराए पहरे बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए निरपहो निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती नवाए जो हुए कृपाल ता सतगुर मेले सब सुख हर के नाए मुक्त भया बंधन गुरु खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए रत्न जन्म सफल गुर किया दर्शन को बल हरिए रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइए जो हुए दयाल सतगुरे अपना ता एह मत बुद्ध पाइए मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे है सर्व सुखा सुख पाइए सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आइए नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले कर सेवा सतगुरे अपने की गुर ते पाइए पाल गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिन से सर्व अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा राग गौड़ी महला पंजवा।

करो रे मन ना हो रे पर ही को लुजी हे सुंदर नारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजी हे अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजी हे जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजी हे गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

हर कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लोहो किस सोचो चितवो,

तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आगियो रहाओ मान अभमान दो समानी मस्तक डार गुर पागियो संपत हरख न आपत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टागियो निरपौ भये संत भ्रम डारियो पूर्ण सर्वागियो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागियो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनागियो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख तृष्ण सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुरु पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ सास्त सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना सादा दह दिस लै इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इहो मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पए पैरा तब एहो कहां कमावन परिया जब एहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन एहो रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

एहो जियो वताई बल बल जाई जियो किस निव निव लागो पाई जियो पोथी पंडित बेद खोजंता जियो होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो गीत नाद कीर्तन गावंता जियो हर निरपो नाम त्याई जियो

गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाओ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो शोभा वंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सुकरनी जियो, जन नानक सहज समाई जियो, गौड़ी महला पंजवां माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस सास सास चितारे जियो, संत देव संत

वण तेन त्रि भवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी एहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन एहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जी।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महल।

जोर तुम्हारै सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातिया सुनकै चुप किया तद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहों चौहों क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए गुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रत्ते परमेश्वर जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधिये पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाम जम कंकर नेड़ ना आवई

साज सब फिक्किया तन मन फिक्का होय बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मटाए कह पर उपकार करे माल खजाना थे हो कर हर के

रहियो राम सरनाई गौड़ी महला नौवां। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एहन समग्न रहे माया में। कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यो। एह विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग। देख तास उठ तावे भुगत मुक्त का कारण स्वामी। मूड़ता ही बिसरावे जन नानक कोटन में को। भजन राम को पावे गौड़ी महला नौवां। साधो इहो मन गहियो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है। जाते फिर ना रहाई रहाओ कठन क्रोध घट ही के भीतर। जेहे शुद्ध सब बिसराई

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावै कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्योरा ता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना।

कर्म है अमृत तस कर ले, नन्ना कार न कोई करे, राख है आप वड्याई दे, नील अनिल अग्न एक ठाई, जल निवरी गुरबूज बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखों कैसा, सागर डूंघर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, न डरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने तीने पौन, जिन कहया तिन कहन बखानिया, जिन बूझया तिन सहज पछानिया, देख भी चार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहे समाई, निज कर व्याप रहे निज ठाई, पुस्तत करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचै साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी गुआरी महला पहला, ना मन मरे न कार्य होय, मन वस दूता दुरमत दोय, मन माने गुरते एक होय, निर्गुण राम गुण वस होय, आप निवार बिचारे सोए रहाओ, मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम बुरु दूर है न ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन सुत।

मेल मलाए गुण संग्रह औगण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन तावे साचे सूचे मैल ना पावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट दिसे ता कहया जाए बिन देखे कहना बिथा जाए गुरमुख दिसे सहज सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए सुख मांगत दुख आगल होए सगल बकारी हार परोए एक बिना झूठे मुक्त ना होए कर कर करता देखे सोए तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुपाए गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन मह साचो गुरमुख भाऊ।

सर्ब जंजाला, मनमुख को चील कुशत बिकराला, सतगुर सेवे चूकै जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूजै एक लिवलाए, निज करवासै साच समाय, जम्मण मरना ठाक रहाय, पूरे गुरते एह मत पाए, कथनी कथों ना आवै और, गुर पुछ देखिया नाही दर होर, दुख सुख भाणै तिसै रजाय, नानक नीच कह लिवलाय, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अहंकार बनास, दूजा

0: पौ जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप शाने
1: साचे शब्द धरनी साने
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै न जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दीसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

कामन हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी तत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मनमुख डोलाए गल जेवरी धंधै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यो तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस से बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाव चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे बाजे तख्त सलाम अदकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट तिसको वाह वाह जे वाट दिखावे तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे तिसको वाह वाह जे मेल मलावे वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अनदिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हौ मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हौ हौ करत नहीं सच पाई है हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाओ हौ मैं कर राजे बहुतावह हौ मैं खपह जन्म मर आवह हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावै निरपो कै घर ताड़ी लावै हौ हौ कर मरना क्या पावै पूरा गुर भेटे सो झगड़ चकावै जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हौ मैं बंधन बंद पवावै नानक राम भगत सुख पावै गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी भरम भलाया जो उपजै सो काल संघारिया हम हर राखे गुर शब्द बिचारिया रहाओ माया मोहे देवी सब देवा काल ना छोड़े बिन गुर की सेवा ओह अबनासी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना नामो भूले जम का दुख सहना।

है। मनमुख को आवत जावत दुख मोह है रहाउ। अपयो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बहस सहज कर लही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोलै। गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत वरोलै। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका। उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा। जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ। गुरमत राम जपै जन पूरा, तित काट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा धार। जिनकै हिरदय हर हर सोई, तिनका दर्स परस सुख होई। सर्व जिया मैं एको रवे, मनमुख अहंकारी फिर जूनी भवे। सो बूझै जो सतगुर पाए, हउ मैं मारे गुर शब्दे पाए। अर्ध उर्ध की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिए। सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा। एहन सुपाल राख ले आत्म सुख तारा। इत उतराखो दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा। जह देखो तह राव रहे रख राखन हारा। तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर दी, बिन ज्ञान बिचारा। बिन उपमा जगदीश की, बिन सैना अधियारा। जग बिन सत हम देखिया, लोभे अहंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया, सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को, अपरंपर सोई। बिन

आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै सहजे पत पाई अंतर शब्द निधान है मिल आप गवाई है नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावै नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

है अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह कड़ुए को मीठा। राते की निंदा करह ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह ठाकुर नहीं दिस। पोखर नीर वरोली है माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा। नानक चीन आप को सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया। गुर किरपा ते बूजी है सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह ना जाए जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जम्मे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे सूतक भोजन जेता किस खाए। सूतक कर्म ना पूजा होए नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए मरे ना जन्मे काल ना खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोई विण नामे को मुक्त ना होए। जोग चारे नाम उत्तम शब्द विचार। कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे ना आवे जाए नानक गुरमुख रह समाए। गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हिरदय उर तारा। गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पड़ तजोह विकारा। गुरमुख भोजन उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए। गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसे मन आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई। लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुख होई। मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई। आवे जावे तौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना। बागजियों लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना। बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

बताए, साच ना छपे जे को रखै छुपाए, ज्ञानी बूझ सहज सुपाए, गुरमुख साच रहिया लिभ लाए, हम माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मलाए, सतगुर दाता शब्द सुनाए, धावत राख ठाक रहाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूझै कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनु कृपा करे सो हर रस पावे, अनगिन हिरदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सूखा, रहाओ हिरदय सूख पया परगास।

गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कटंब स्यो प्रीत ना होई, जां हिरदय वसिया सच सोई, गुरमुख मन भेदिया अस्थिर होई।

तन सब जग महलोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लिव लागी। सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी। हौं मैं ममता दुर्मत दुख नाश जब हृदय राम नाम गुणतास। गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय

मन करहला अत निर्मला मन लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाई मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिव लाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महा जाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिद नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड़ भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम पवह बाहर पाल गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरवी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहो मन मह करत गुमाना तब इहो बावर फिरत बेगाना जब इहो हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहिला फल मशकीनी सतगुरे अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहो जान समंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन्हें अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्ण करामन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरे सब कै संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसकै हिरदै रविया सोए, मन तन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाउ, जास जपत पहु अपदा जाए, तावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह हो मैं भागे, जास जपत बस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत एह तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगाह सिजे, जास जपत कोट मिट है अपराध, जास जपत हर हो वह साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कशु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ता कै आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ता कै होए, जाको दया मया।

जपना, सहजे भोजन सहजे पाओ, सहजे मिटियो सगल दुराओ, सहजे होआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जाके सहज

ज्ञान सहज कथा मह आत्म रसिया ता कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ता कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जा कै सहज भया सो जाने नानक दास ता कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीसै पासारा बिन सजाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहा संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहा सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ता का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाव जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगाह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल धनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको भये कृपाल कृपा निद तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यों जुरे ता हुए निस्तारा।

दास नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जा कै सुन नाम, कोट पूजा जा कै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते भिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

भांत जाकी दृष्ट हुए सदा निहाल मन मेरे कर की काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवां बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीवे है साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिस्ता महवास बिन सिमरन पय कुकर काम साकत बेसुआ पूत नाम बिन सिमरन जैसे सींग सतारा बोलह कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन घर दब की न्याई साकत थान पृष्ट फराई बिन सिमरन कुकर हर काया साकत लोभी बंद ना पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवां गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे ना।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावो पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवो पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोको दीना जियो, अपना दास राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार।

था। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावै कोट कर्म करतो नरक जावै हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवां आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूर

माता पाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिलक काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग पूर्ण पुरख नव तन नित बाला हरे अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम भगत कौ दीन राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद खोजत फिरे अस

सुन सुन पंत डराओ बहुत पैहारिया, मैं तक्की ओट संता हां लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसे ही नाही हर पूर पंडारिया, चहो दिस जपिया नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ त्योहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ पुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्ब निदान अकथ कथारिया, हर दरगाह शोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लब्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजन करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हों मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किने गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहों ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेविया सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरा मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरू चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के भोगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता, सगली अवद बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सखे पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा करो।

सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसे अमृत बाणी नानक सा धन ता फिर रावे जा तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़े आरे क्यों फूले गल जेवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवे नाम बिना गत कोई ना पावे हठ निग्रह बेबाण नानक सच कर शब्द सुन्यापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अन दिनो तिस बाज वखर कोए ना सूजे नाम ले वो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम।

हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कह सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे तरी प्यारू नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गल हारू तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे दूजे भाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोहे खुआई कूड़ बगुती तां पिर मुती सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए नानक कामण सदा रंग राती हर जियो आप मलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवन मलाए बिन गुर प्रीतम आपने जियो कौन भरम चुकाए गुर भरम चुकाए इउं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारी नानक कामण हर वर पाया गुर कै भाए प्यारी गौड़ी महला तीजा पेरे

कापड़ तन ना सुहाई। कापड़ तन सुहावै जां पिर भावै, गुरमती चित लाइए सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइए। गुर शब्द मेला तां फिर रावी, लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी, जां हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारी। गुर शब्द विचारे हो मैं मारी, इन बिद मिलोह प्यारे। सा धन सुहागण सदा रंग राती, साचै नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है, दुबदा मार निवारे, नानक कामना हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचों होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद ना आवै जियो, भावै अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावै, मरियै हावै। बिन फिर क्यों सुख पाईऐ, गुर आगै करो बिनंती। जे गुर पावै, ज्यों मिलै तिवें मिलाईऐ। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोए लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिया प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हमे मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आगै जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिया जियो। आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रह दिन राती, अन दिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो। क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो। शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए। हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरियै। गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवतिया इउं मरियै। जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो। डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी। गत नहीं जानी, हम मैं तात संसारी। जो आया सो सब को जासी, उभरे गुर विचारे। गुरमुख होवे राम नाम बखाने, आप तरह कुल तारे। नानक नाम वसै घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो।

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुणदाता अब गुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए गौड़ी महला तीजा।

हर पाए, घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जा चाख है चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआए, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रहे निवलाए, नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए।

करि आवहु नाह प्यारी। हौ माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा। हौ सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामन, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वादाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंध पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है घर मह, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला पंजवा। मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। धर्मशाल अपार दयार, ठाकुर सदा कीर्तन गावे। जह साध संत इकत्तर होवे, तहां तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी, हो दीन कृपारा। बिनवंत नानक दर्श प्यासे, मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप, चाल निराली। मोहन तू मान है एक जी, अवर सब राली। मान है ता एक अलेख ठाकुर, जिन्ह सब कल धारिया। तुद बचन गुर कै वस किया, आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया, आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श त्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपह निधाना। जम काल किनको लगै नाही, जो एक मन त्यावे। मन बचन कर्म जे तुद अराध है, से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते, से देख दर्श सुगियाना। बिनवंत नानक राज निश्चल, पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान

ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही, सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी। जित लग तरिया संसारी, गौड़ी महला पंजवा सलोक। पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन सिरी तहर, चरण कमल अरादिए। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिए। कल मलै दहता शुद्ध करता, दिन सरैन आरादु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्चल बिरदाया। भगत वच्चल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। बिसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारी सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे, जी जा के प्रभु बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मिल उद्म करेहा। मनाए लह हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंते, सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत है, नानक जरा मरन पै नरक निवारे। पनीत करे तिस जनत है, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मतांत पकाइए, सहज सुपाए अपाद रहत होए। गीत गोविंद है गाइए, कल कलेश मिट है ब्रह्म नास है। मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम ते आइए, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण। देखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समर्थ पुरख मलाए, नानक तिन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग लिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया।

बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुख कियो अकारा एक है सूत परोवन हारा पिन पिन त्रै गुण विस्थार निर्गुण ते सरगुण दृष्टार सगल पांत कर करह अपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू पांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सोच पाई तेह संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पाय सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा सलोक तन तन कहां पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ सुरगना आछ अत प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहां व्यापह ताहू जो एक शाद अन कतै ना जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हट मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बीचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एकै को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवनहार मन है बिसराना तारो कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना ते मिटै नानक जिह मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जो न फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरों बिखम एह माया।

नदर करी नानक जो प्रभ भाणिया पूरी तिना परी। सलोक गन मिन देखो मने माहि सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटै नानक नाम अरोग पौड़ी। गग्गा गोविंद गुण रवो सास सास जपनीत कहां बसासा देह का बिलम ना करे हो मीत। नह बारक नह जोबन नह बिरदी कस बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं ए ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग। सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोय आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए पौड़ी। कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाहि नह हुआ नह होवना जत कत ओही समाहि। कूलै तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे। कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया। सलोक नान काले सब दिवस सास नह बदन कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोह नानक ते गुवार पौड़ी। गंगा अंगरासै काल ते जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आय कर कृपा जिहे आप दुआय। गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जिहे जीवत जपया प्रगट भय नानक नह छपया। सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत प्रगट भय आपै गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी। चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा। सलोक छाती शीतल मन सुखी

दास्त मारे, दास दासन के पानी हारे। सच्चा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। शाड सयानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई। शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। श्लोक जोर जुल्म फूलह कनो, काची दे विकार। हम बुद बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी। जज्जा जान हों कछ हुआ, बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ। जो जान हों भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जान मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता। साध संग जे हों मैं मारी, नानक तां को मिले मरारी। श्लोक चालांगे उठ नाम जप, निसबासुर आराध। कारह तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाद पौड़ी। चज्जा चूरन मिटे तुमारो, राम नाम स्यों कर व्यवहारो। चूरत चूरत साकत मुआ, जां कह हृदय होत पाओ बिया। चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजो, नानक नाम प्रीत पवड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात एह हेत। गणती गणो ना गण सको, ऊठ सधारे केत। न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिय संग। ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञान तो सोई संत सोए, प्रमते की चत भिन्न। अंधकूप ते कढ़ो, जेह हो सो प्रसन्न। ज्ञान कै हाथ समरथ ते, कारण करने जोग। नानक ते उस्तत करो, याहू कियो संयोग। श्लोक टूटे बंधन जन्म मरन, साध सेव सुख पाए। नानक मनो ना बिसरे, गुण निद गोबिंद राय पौड़ी। टहल करहो तौ एक की, जाते बिरथा ना कोय। मन फन मुख ही है बसै, जो चाहो सो होए। टहल मैल तां को मिले, जां को साध कृपाल। साधु संगत तौ बसै, जो आपन होहे दयाल। तोहे ताहे बहु पवन, बिन ना

आद संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत कह फिरो ढूंढन या मन माहे संग तुहार है प्रभु बसे बन बन कहां फराहे तेरी ताहो साध संग हम बुद्ध बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामै जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हों हों आवे जाए तहत तहत अब टह परे साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत पौड़ी नाना रण ते सीजी है आत्म जीत कोवे हों मैं अनस्यो लर मरे सो सोबा दू होए मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश मनुआ जीते हर मिले तेहे सूर तन वेश ना को जाने अपनो एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन कर एउ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम भउ काटियै चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तां स्यो प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय फल पावहै मन बांछते तपत तुहारी जाय त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव ताहू संग ना धन चले ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो।

भरे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा, दोष नहीं काहू को मीता, माया मोह बंद प्रभ कीता, दर्द निवार है जाके आपे, नानक तेते गुरु।

श्रद्धा तावत तौ मिट संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सोभा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते

हर न पाया। पतत पावन अगम हर राया, होत पनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जप है मिल साधु। पर पंच त्रोहो मोहो मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई। पात शाह सत्तर सिर सो, नानक दूसर अवरना को। सलोक फाहे काटे मिटे गवन, फतह पही मन जीत। नानक गुर ते थित पाई, फिर न मिटे नित नीत पौड़ी। फफा फिरत फिरत तू आया, दुर्लभ देह कल युग मैं पाया। फिरया अवसर चरै ना हाथा, नाम जप हो तो कटिया फासा। फिर आवन जान ना होई, एक जप हो जप सोई।

संपै बहु भोग रस नानक साध रुआल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा वीरा आपन बुरा मटावै ताहू बुरा निकट नहीं आवै बांधियो आपन हो बंदा दोष देत आगह को अंधा बात कीत सब रही सियानक जिसै जनाब हो सो जानै नानक सलोक पै पंजन अग दुख नास मनह अराध हरे संत संग जेह रिद बसियो नानक तेना भ्रमे पौड़ी पब्बा परम मटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाए दुत्तर महा बिखम एह माए गुरमुख भ्रम पै मोह मटाया नानक तेह परम सुख पाया सलोक माया डोलै बहु विधि।

देव सर्वत्र में ऊन न कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, कट कट अंतर ब्रह्म समाहु, वास देव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुगद अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा लाड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे रिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेह मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बीचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारे, तुम समरत अगणत अपारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पहे,

जो किन मैं ऊने सुबर पराहू खरा निमा ना होत परानी अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लये समाए पौड़ी। ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

सिमरत सदाख्यर कीने राम नाम एक आख्यर किनका एक जिस जी बसावे ताकी महिमा गनी ना आवे ताकी एक दर्श तुहारू नानक उन संग मोहे उधारू।

जन का दासन दत्तना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी।

संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बिबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै ना भंग हर का नाम जन

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तांकै बल बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभमान आपस कौ जो जाने नीचा सू गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट साज

सगल कटाको देव हुदान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानू आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी।

तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे धोए, गर्धब प्रीत पस्म संग होय, अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काड ले हो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, छपश नाही कछ करे छपाया, बाहर ज्ञान

प्रभ आप, नानक तेजन सहज सुमात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजे डोरा, निस कहिए तो समझे पूरा, कहां बिसन पद गावे गोंग, जतन करे तो पी सुर भंग।

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मह सूख कनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूतर धारी।

लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुभा।

मिथ्यारत हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रोहो मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर

जाय। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अप

रहत, सब कछ जान आत्म की रहत, जिस पावै तिस लए लड़ लाई, थान थनंतर रहे आसमाय, सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिस को सिमरत परम गत पाव है, जेह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसै त्याहे सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहु तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहिय त्यावन जोग, जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावै, तिसै त्याग कत अवर लुभावै।

मन सुख पाव है हर हर जस कह जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझ

का ध्यान जिह प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चतारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप।

प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाउ, आप गवाए सो हर गुण गाओ, प्रभु कृपा ते हुए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए, सर्व निदान प्रभु तेरी मया, आप हो कछु न किन्हु लया, जित जित लाभ हो तित लग है हर नाथ, नानक इनके

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिले साध कै संग सदा पर फुले साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु धावै साध संग अस्थित मन पावै।

साध क्या संग नाही हो ताप, साध क्या संग तजै सब आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध क्या संग न कबहू तावे, साध क्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध क्या संग बसै थानी उच्च, साधु कै संग महल पहुंच, साध क्या संग दृढ़ है सब धर्म, साध क्या संग केवल पार ब्रह्म, साध क्या संग पाहे नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध क्या संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मी

साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा, साध संग भय आग्याकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुनह तेता बखियान है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जा

नाही अभमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म

ना पाईए धर्म नानक किस मिले जिस लिखिया धुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नगरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तू दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

लोक उस्थित करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु वेद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म

कई कोट भय अभमहनी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अबनास, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन।

के दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास

जल थल महियल सोए। अष्टपदी करन करामन करन जोग, जोत सिपावै सोई होग। हिन मह थाप उथापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मह रहे आसमाई। प्रभ भावै मनुख गत पावै, प्रभ भावै ता पात्र तरावै। प्रभ भावै बिन सास्ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण भाखै। प्रभ भावै ता पतत उधारै, आप करै आपन बीचारै। दोहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतर जामी।

कै हाथ हुए ता सब किस ले, जो तिस पावे सोई करे, अनजानत बिख्या मह रचे, जे जानत अपने आप बचे, परमे फूला दह दिस धावे।

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्म

बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान

अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगाह कहो कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे तिसह।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब धारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई तब लग

न जाए। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करनै हार, उसते भिन्न कहो किश होए, थान तनंतर एकै सोए, अपने चलते आप करनै हार, कौतक करै रंग अपार, मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह।

अष्टपदे संत कै दुख में आर जा घटे, संत कै दुख में जमते नहीं छुटे, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखे ना कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय, संत किरपाल किरपा जे करै, नानक संत संग निंदक पी तरै, संत के दुखन ते मुख भवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै।

नानक ज्योति सपाव है सोई ठिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मै सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समा

नह किस मरे आपन चलते आप ही करे आमन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड धारन धार रहो ब्रह्मांड अलख

ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ

भोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम थम्मण त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मण ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

तिरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया ताज अभमान ले हो।

जंजाल तन तन कह सब कोए मुख पूजल हर दरगाह सोए इहो व्यापार विरला व्यापार है नानक तां कै सद बलिहार है चरण साध के धोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करहु इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै ऊट गही संत है दर आया सर्ब सुख नानक ते पाया मृतक कौ जिवल नहार भूखे कौ देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे गुरब लिखे का लहना पाहे सब किस तिस का ओह करनै जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मल एह करनी कर किरपा जिस कौ नाम दिया नानक सो जन निर्मल किया जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिया केहो लोय जा कै हृदय को होय सच करनी सच ता की रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किन अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल

ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत ता की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर ना बूझ करत बीचार, करते की मित ना जानै किया, नानक ज्योत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग रात जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात राखै, ताकी गत मित कोए ना लाखै, प्रभु के सेवक को ना पहुंचै, प्रभु के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राखै, पसम करै लश्कर कोट लाखै, जिसका शासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, तिसके करतब बिरथे जात, मारे ना राखे अवर ना कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपिया, ई अमृत इह मन तन त्रपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नाही।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सत गुर तिस का नाम तिस कै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै

बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबद भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आतम पतियानी। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लय मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किन न पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए। उस

मन मह राखे हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक भरम मोह दुख तह ते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद भया दुख नाठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहु चूका निरपहु होए बसे सगल ब्याध मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा तारी साध संग जप नाम मरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पये प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चल बिन भजन विखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार एक सिमर नाम आधार अवर अपाव सब मीत बसार हो चरण कमल रिद मह उरतार हो करण कारण सो प्रव समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत इहो तन संचो हो।

मित जाहि जिस धन को चार कुंट उठ धावह तो धन हर सेवा ते पावह जिस सुख को नित बांचह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनक अपावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सर्व निदान मह हर नाम निदान जप ना

रहत गत पावहु। सार भूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव। गुण गावत त्रिउत्तर सुमैल, बिन सजाए हों मैं बिख फैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल। चाड़ सियान पसगली मना, साध संग पावह सच धना।

मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरियाप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक विस्थार एक ते पये एक अराध परासत गए।

आया परया तो सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजै चाहो साध कै संग परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल ना भान सो क्यों बिसरे जे किया जान सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन दिया सो क्यों बिसरे जे अगन मह राख गुर प्रसाद को बिरला लाख सो क्यों बिसरे जे बिख ते काट जन्म जन्म का टूटा गांड गुरपुर तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो इहो काम आन त्याग जप हो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जप हो अवरहा नाम जपाव हो भगत भाई तरिय संसार बिन भगती तन

पुरुख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाय, अनक राज भोग बडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सो करनी सो बातनवंत।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी आपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

आप पतियारा तह कौन कतह कौन सुनने हारा बहु बेअंत पूछते उच्चा नानक आपस को आपह पहुंचा जह आप रचियो प्रपंच अकार तेहो गुण मह कीनो विस्थार पाप पुन कह भई।

नानक एकै जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दुहु पाख का आप है धनी उनकी शोभा उनहु बनी आप है कौतक करै अनद चोज आप है रस भोगर निरजोग जिस भावै तिस आपन नाए लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेश मार अथाहा अगंत अतुलै ज्यो बलावहो त्यो नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिस्तार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपै एक आप विस्तार जान तिस भावै तां श्री

दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल तां कै निकट ना आवत काल अमर पये अमरा।

वेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रह सत बचन साधु सब कह जो जो होए सोई सुख माने करन कराव नहार प्रभ जाने अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्थार तिस भावे ता एकंकार अनक कला लखी नह जाय जिस भावे तिस लये मलाय कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए।

सोए ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुआउ जन कै संग चित आवे नाउ आप मुकत मुक्त करे संसार नान

हस्तपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार।

सुंदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संग लैन।

समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाई साध सरन नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत जिस जन आवै।

नानक संत निर्मल पए जिन मन वसिया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रम तो घणो सदा संघार नीच हरख सोग सहसा संसार हों हों करत बिहाय जिन किए तिसह न जाननी।

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी चतुरथ चारे वेद सुन सोध्यो तत विचार सर्ब खीम कल्याण निध राम नाम जप सार नरक निवारै दुख।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझिय नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक ऊतम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पवजल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

तार्य नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद करना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस जिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बस

अंत मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइय नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाइय।

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बासकार सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन वेद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राख एक ठाए मन तन शुद्ध जपत हर नाय सब मह पूर रहे पार ब्रह्म।

पतत उदारन मन बसै नानक छूटै नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौ

ब्रह्म अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिछान। श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे संतोख दिया गुरुदेव।

हों मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, चरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब स्यों,

आया नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सो आया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिए सिमरो हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन सलोक दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक।

साध। सलोक महला चौथा। सतगुरु पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोय। एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए। नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोए। महला चौथा। हों मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार। लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार। हों मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उरतार। सब कार्य तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार। पौड़ी। तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई। तुधनो सब त्याईंदी सब लगे तेरी पाई। तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मनमुख अहंकार सलाहंदे हमै ममतावाद जिन सलाहन से मर है खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया।

मेरा मन पहाया सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा मन तन रत्ता रंग सियो गुरमुख हर गुणतास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है किस नाल तू बड़ी है तुद जे वडहोए सो आखी है तुद जेहा तू है पढ़ी है तू घट घट एक वरतदा गुरमुख परगड़ी है। तू सच्चा सब सुदा खसम है सब दू तू चढ़ी है तू करह सो सच्चे होए सी ता कायत करी है।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहै सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किश गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावे तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवे गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुज सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का

0: मन रान हार तिनके काज दइए आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जा करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख करह साबास साह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करह रहरास गुरपुरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपुरे दान दिया हर निश्चल नित बख्शे चढ़े सुआया कोई निंदक वड्याई देख ना सकै सो करते आप पचाया जन नानक गुण बोले करते के भगतानो सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड़ मैं होर को दिस न आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चे पिछों दे आख्या कम न आवे अध विच फिरे मनमुख वेचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अपिओ पीवे शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावे सदा आनंद रहै दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल विख पाप दोख लह जावे फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावे जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराध दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाए पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ मुख कोले मन खोटे दइए विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुखे नू पाया पास ना देई कोई बहन जगत मह गूहू पर सगवी मल लाए मन मुख आया पराई जो निंदा चुगली नो वे मुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहां वे मुखां दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई वे मुख सुने नफरे पौली पौंदी फावा हुए कै उठ घर आया अगे संगती कुड़मी वेमुख रलना ना मिले ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो साचै मार पचाया एहो अखर तिने आखिया जिन जगत सब उपाया महला चौथा साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों रज खाए जे साहिब कै घर वत होवे सो नफरै हाथ आवे अणहोंदी कित्थों पाए जिस दी सेवा कीती फिर लेखा मंगी है, सा सेवा औखी होई, नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी।
1: नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे,
0: भगत मुख है ते बोल दे, से वचन हवंदे, प्रगट पहारा जापदा सब लोक सुनंदे, सुख ना पायन मुगद नर संत नाल खहंदे, ओए लोचन उन्ना गुणे नू, ओए अहंकार सुनंदे, ओए विचारे क्या करहे जा भाग धुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे, वैर करहे निर्वैर नाल धर्म ने आए पचंदे, जो जो संत सरापिया से फिर है पवंदे, पेड़ मडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा, अंतर हर गुरु त्याईंदा वड्डी वड्याई, तुस दित्ती पूरे सतगुरु घटै नाही एक तिल किसे दी कटाई, सच साहेब सतगुरु कै वल है तां झक झक मरै सब लोकाई, निंदका के मुंह काले करे हर करतै आप वधाई, ज्यों ज्यों निंदक निंद करहै त्यों त्यों

सच साहा हमारे सच पूंजी नाम दिरड़ाए प्रभ वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लह गुण कथ है निरारे सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुंह कढ ना सके ओस

करे, हर वस्तु संभाले, नाम निदान हर बन जीए, हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे, से मूड़ बेताले, से उजड़ भरम पवाईए, ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग मह होया, नरक घोर दुख खू है, उथे पकड़ ओहो ढोया, कूक पकार को ना सुने, ओहो औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया, ओहो तेली संदा बल्द कर, नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेख सुने नित सब किश, तिदू किश गुजा ना होया, जैसा बीजे सो लुणे, जेहा पुरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुर के चरण धोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, ज्यों लोहा काठ संगोया, जन नानक नाम त्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा। वडभागिया सुहागनी, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत परगासिया, नानक नाम समाए पौड़ी, एहो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे खोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता एक रविया इको ओत पोत, एक देखिया एक मन्निया, इको सुनिया।

जिन नाम अरादिया आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छडाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर तारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जा दिथा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भावसी।

सिख मेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से तृप्त रहे आघाई एहो हर रस से जान दे ज्यों गूंगै मठियाई खाई गुरपूरै हर प्रभ सेविया मन वजी वधाई सलोक महला चौथा जिन्ना अंदर अमरथल से जान नसूलिया हर जान है से बिरहो हौ तिन विटो सद घुम घोलिया हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन विटो तल रोलिया जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हादी है मल होमे कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल न आवे लाहा हर भावे सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली सच सच्चा जिन्नी अरादिया से जाए रले सच नाले सच सच्चा जिन्नी ना सेविया।

रंग चलूलै अतरती सच्चे स्यों लगा ने हो कूड़ ठगी गुजी ना रह कूड़ मलम्मा पलेट तरे हो कूड़ी कन वडाइया।

अवस्था सतसंगत मह हर उस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचे नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अग्गै पिछै ढोई नाही।

आया जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किस जानदा, जो जिया अंदर वरतै। तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै। सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनतै। तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै। सतगुर नु मिले सो हर मिले, नाही किसे परतै। श्लोक महला चौथा, एह मनुआ दृढ़ कर रखी है। गुरमुख लाइयै चित, क्यों सास ग्रास वसारीऐ। बहंदिया उठदिया नित, मरण जीवन की चिंता गई। एहो जियड़ा हर प्रभ वस, ज्यों भावै त्यों रख तू। जन नानक नाम बखश। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने। खिन आगे खिन पीछे, सदा बलाइए महल ना आवे। क्यों कर दरगाह सीजै।

सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाउ। हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाउ। ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए। सतगुर की गणतै कुसी है दुखे दुख विहाय। सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कड दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

आपो आपनी आपे पछताणी अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे शाह के से परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए, राम नाम धन वखरो नानक सदा ते आए पौड़ी। पंजवा।

संग जुट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिख्या ले नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुद गौड़ी की वार महला पंजवा राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर गावणी।

स्थान थनंतर राव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागति साध साध कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धनी नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौ जल पार पौ महला पंजवा। वाहु संदे कपड़े पहर है गर्भ गवार नानक नाल न ना चलनी जल बल होए शार पौड़ी से ही उबरे जगह विच जो सच्चा रखे मोहे डिठे तिन कै जीविए हर अमृत चखे काम क्रोध लोभ मोह संग साधा पखे कर कृपा प्रभ अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी को सकै ना लखे। श्लोक महला पंजवा नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवै चित जित दिन विसरै पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत महला पंजवा। नानक मित्राई तिस सिउ सब किस जिस कै हाथ कमित्रा से कांडी है एक विख ना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। श्लोक महला पंजवा डिठड़ो हब ठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुआओ जिन्ना सतगुरु भेटिया महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वाथ सुहावी साए नानक नाओ जपंदो तिस धनी पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी जो जन भेटै साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी तोसा दित्यै सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरै भुख

दाता किसै प्राप्त भाई रहो, जिस दे बदाता मन तन भीतर मौलिया, हर रंग जल राता साध संग गुण गाया, सब दो

मूले मर गए मर पे ना सकै मूल। वे मुख होए राम ते ज्यों तस्कर उपर सूल। पौड़ी सुख निदान प्रभ एक है अबनासी सुनिया। जल तल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया। ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया। मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया। तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समधा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा श्लोक महला पंजवा कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवा बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी ए निशानी साध की जिस भेटत तरी है।

आवई फिर बहुड़ ना मरिय भव सागर संसार बिख सो पार उतरिय हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिय नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरिय तलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित गाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अगम बिस्माद नानक राम नाम धन कीता पूरे गुर प्रसाद पौड़ी तोह ना चली खसम नाल लब मोहे बगुत्ते करतब करन पलेरिया मद माया सुत

वह आप जित खादे मन तृप्ति है। नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग में से खट है। जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी। सच्चे दी आस निश्चल एक सरेरिया। होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै। तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया। नानक बल जास सलोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सफाए। तन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाए। सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया।

रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे श्लोक महला।

दह दिशा जल पर्वत बन राए जिथे दिठा मृत को तिल बेठी आए पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम त्यावो।

0: सारी पौड़ी
1: रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उदरै मित्ता हर जस लिखै लाए भावनी से हस्त पवित्ता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे भिख्या गढ़ जिता नानक लड़

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाउ मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जिहे पावक सुर नर है जारी,

तू तरवर हौ पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोग काहे दुख मानिया।

कबीर जी नगन फिरत जो पाई जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेद न गई आकाई बिंद राख जो तरिये पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी।

रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पाव है कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै। कबीर जी गौड़ी क्या जाप क्या तप क्या व्रत पूजा, जा कह हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधव स्यों लाइय, चतराई ना चतर भुज पाई है। रहाओ पर हर लोभ अरलोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार। कर्म करत बदे अहमेव, मिल पाथर की करही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के हुए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहा जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण

कबीर जी, अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है, जौ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहां ही, जान जान सब

तौ की जय जो आपन जी जय। मैं ना मरू मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवन हारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपथ कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना पूर्व जन्म हो तप का हीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन पया मगहर की बासी कांसी मगहर

इस तन धन की कवन बडाई, तरन परे उरवार ना जाई रहाउ। रात जे सोवे है दिन करे है काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम। हाथ ता डोर

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाउ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सह।

सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ। कहो कबीर सुख सहज समावो आप ना डरो ना अवर डरावो। गौड़ी कबीर जी पिंड मुआ जियो केहे घर जाता शब्द अतीत अनाहद राता। जिन राम जानिया तिनह पछानिया ज्यो गूंगे साकर मन मानिया। ऐसा ज्ञान कथै बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ। सो गुर करहो जे बहुर ना करना सो पद रवहो

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक भाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत पुकार।

जब लग रात तब लग नहीं ने हो रहाऊ साहन सत करे जी अपने चोर मैये को मिले ना सुपने तन मन तन।

तिनकै सदबल हारै जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाओ। जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वातु कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तौ अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहु मनह व्यापी, मनह मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई।

बुज बुजनहार सुभागा रहाऊ, सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई, आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै पांद काल सर सांधिया, रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कह छूटिया। गौड़ी कबीर जी

खसम तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरे काहे होए हान नटवट खेल।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन में।

सो जन पर कर जात ना सोही, सो साहिब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर, कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके, सब को कह जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई।

जाऊ, कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बेचारी, कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया, अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ, साधु संगत दियो रलाय, पंच दूत ते लियो छडाय, अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना, सतगुर

माया तपत बुझिया अंगियार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

हल्की लगे ना भारी रहाउ। अर्ध उर्ध दो तह नाही, रात दिन सतह नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुर तहा समाही, अगम अगोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने। सत संगत मिल रही है गौड़ी, पाप पुन दोए बैल बसाही। पवन पूंजी परगास्यो, तृष्णा गुण भरी घट पीतर, इन विद टांड बसाहयो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा रहाओ। काम क्रोध दोए भये जगाती, मन तरंग बटवारा। पंच तत् मिल दान नवेर है, टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई घाटी, चढ़त बैल एक थाका, चलो गोन छिटकाई।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाओ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पाल मीठा अवरना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन परम पलानी अंधा जाप है जाऊं आप छुटकावन ते बांधे बहु।

किस नाही, पांच तात तह नाही, एड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगण कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कही है किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए।

जहाव खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन भये हैं पूरे माया डोल ना लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये पांचन सेर अढ़ाई जो कर पांचन बेग ना पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला काते आई छूटे कुंडे पी गै पुरिया चलियो जलाहो रिसाई शोशी नली तंत नहीं निकसै नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजै फूट मरै जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिलै सिद्ध पाई है।

पाई गौड़ी, जेते जतन करत ते डूबे, भव सागर नहीं तारियो रे, कर्म धर्म करते बहु संयम, हम बुद्ध मन जारियो रे, सास ग्रास को दातो ठाकुर, सो क्यों मनहु बिसारियो रे, हीरा लाल अमोल जन्म है,

माया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहा जां तिस भावै ता हुक्म मनावै इस बेड़े को पार लंघावै गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सारग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन मह उर्द तप करता तो जठर अगन मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठौर ना ठायो कहो कबीर भज सारग पानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांच।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयम क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी भाउ भगत भगवान। संपै देख ना हरखीय विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विध निरति आसो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरक बसेरो पंख को तैसो इहो संसार। राम रस पियारे जेह रस बिसर गए रस और रहाओ। और मुए क्या रोई है जो आपा थिर ना रहाए जो उपजै सो बिनस है दुख कार रुए बलाए। जह की उपजी कह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग। राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले।

साधुः परमो प्रगट हुए नाचुः। या माया के डांडे सूर के सन्मुख रणते डरपै, सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संदौरा रहाऊ काम।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लोरे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जान कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना।

जास गुण गाव है तास बस है मूरे प्राणा न रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पय मन बासन त्याग घट्यो अभमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

आदि बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन ही माहे ये अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लखे ना कोई।

दृश्य काश काश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेव पायो अपंग अशेद तुरक तरी कत जान।

आद मैं जाना लिख अर मिटै ताई न माना ओंकार लख जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जे तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खक्खा एह खोड़ मन आवा खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा खसमह जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह ना होई, तां घट माहे घाट जो पावा, सो घट छाड अब घट कत तावा, नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम स्यानप एह, चचा रचत चित्र है भारी।

यह है शत्रपत पासा शाक के ना रहो शाद के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाद कत आप बंधावा जज्जा जो

परवाना। कत झख झख और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा। नन्या निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए। जा कारण जग ढूंढ्यो, नेरो पायो ताहे। तटा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़ो सो गड़ मह पावा।

बसेरा, अर्दह उर्दह मंज बसेरा, अर्दह चाड़ उर्द जो आवा, तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रही रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तबले निरख है निरख मलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यो परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूल फल हुई,

भूपत पहचानिया, ममा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, ममा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई, एहो मन शक्ति एहो मन सियो, एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कह, जैया जो जान तो दुर्मत, हन कर बस काया गाँव, रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारो नाव, रारा रस निरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया, ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ, ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਜੋ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਤਉ ਅਲਹਿ ਲਹਿ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੇ, ਵਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸੰਹਾਰ, ਬਿਸਨ

अकुल निरंजन एक है पाय, तृतीया तीने सम कर लियावे, आनंद मूल परम पद पावे, साध संगत उपजे विश्वास, बाहर भीतर सदा परगास, चौथे है चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं फिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहू लोक का पियो अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान।

पंच चोर की जाने रीत, कर छोड़े बाहर जिन जाए, नातर खरार सहराई, राय बुधवार बुध करे प्रगास, हृदय कमल मह हर का बास, गुर मिल दो एक सम धरे, उर्द पंकल।

नाहि, हैनस कसमल तो वह नाहि, सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै, अन दिन आप आप स्यो लड़ै, सुरखी पांचो राखै सबै, तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै, थावर थिर कर राखै सोई, जोत दी वटी घट मह जोई, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभ जान, रमत राम स्यो लागो रंग, कह कबीर तब निर्मल अंग, राग गौड़ी चेती बाणी नाम देव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देवा पाहन तारियली,

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कस आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

पड़े रिथि सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी ते तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

करी गुरु प्रसाद वस्से मन आई दुख अनेरा विचों जाई साच प्यारा आप करी अवरी को साच ना दे जे किसे देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचे कल का पाओ जति सती कह राखह पाओ नानक नाम विटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ।

याद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिया सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन धोए साखी पास जैसा तू करहे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुझे आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर किरपा अपने घर आया ता मिल सखियां काज रचाया खेल देख मन आनंद भया सहो वी आहण आया गावो गावो कामणी बी बेक बीचार हमरै घर आया जग जीवन पतार रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जां सहो मिलिया ता जानिया तिहो लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी पूर्ण कार्य ना हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाई दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाव सतगुर सेव पाए निज थाव मन चूरे खट दर्शन जान सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाव अधिक त्यास भेख बहु करे दुख बिख्या सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर धन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तरे सिफत सलाहन सहज आनंद सखा सहन प्रेम गोबिंद आपे करे आपे बख्शिंद तन मन हर

अंग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ता कै सद बलिहारे जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेते एको सो होए आसा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्महीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

भेद अठसठ मज्जन हर रस रेद गुरमुख निर्मल मैल ना लागे नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे आसा महला पहला निव निव पाई लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत बिचार हिरदय हर रविया हिरदय देख बिचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभ है मिटे अज्ञान हुए उजियारा रहाउ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे है विच हों मैं भरम ना जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूटे ता को लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाए मनसा मन है समाए नानक कृपा करे जग जीवन सहज पाए लिवलाए आसा महला पहला किसको कहे सुनावे है किसको किस समझावे है समझ रहे किसे पढ़ावे है पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ अनत तरंग भगत हर रंगा अन दिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रह निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रह लिवलाया आद अपार अपार।

आस ग्रास एहलस अंदले दीपक दे पौ जल डूबत चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हों बलिहार है ता कह जाऊ नानक एक कह।

पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई।

सो प्रगट जाय। सच निशान है ठाक न पाय, पंडित पढ़ै बखाण है वेद, अंतर वसत न जान है भेद, गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हों आखा आख बखाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी, नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली, उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै, बिन हर गुर पार न पाई। तुझ बिन अवरना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवरना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है, इस बख्शे जिस नदर करे रहाव। सास बुरी घर वास ना देवे, फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो, हर गुर कृपा ते नदर धरी। आप विचार मार मन देखिया, तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना, दुख सुख देव है करह सोई। आसा मनसा धूब नासक, त्रिहों गुण आसमरास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है, संत सभा की ओट लही। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता, गुरमत पाई सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोए पूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरे पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यों रहे समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हौ पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किछ लेव हो जो उपजै सो अलख अपेव हो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत बिरड़ाई सगली सौदी टोटा आवे नानक राम नाम मन भावे आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी घुंगरू वाजै जे मन लागै तौ जम कहां करे मोस्यों आगै रहाउ आस नरासी तौ सन्यासी जा जत जोगी ता काया भोगी।

तेरा सहो जागे हों निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हों निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

पहला धो पदे तित सरवर डै पहले नवासा पानी पावक तिनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डुबी अले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावन ता फीय जा एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहून खूटस नाहे आसा घर चौथा महला पहला।

धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए। पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रहे जैसे भवै उदासी। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ। फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू। पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू। पंच सखी मिल रुद

जहां हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरेई मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ।

तिस क्या कही है भाई, जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद भावे, नानक तां को मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगाह बहुता बोले, नाओ पवे बाजारी, सतरंज बाजारी।

बंदी अंदर सिफत कराए, ताको कही है बंदा आसा महला पहला। गुर का शब्द मने मह मुंदरा, खिंता खिमा हंडावू। जो किश करे भला कर मानू, सहज जोग निद पावू। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी, परम तंत मह जोगं अमृत नाम निरंजन पाया। ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी मह आसन बैसो। कल्प त्यागी बादं सिंही शब्द सदा तुम सो है, एनस पूरे नादं।

सगली ज्योत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन पर थर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावे कर करनी कस पाई है पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई है बाबा मन मतवारू नाम रस पीवे सहज रंग रच रहिया एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछे भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन पर थर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै

कोई गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआई। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

आए, हर की मत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जान कोए, विरले कर्म परापत होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाण कोए, विणनावै दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरै पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, किनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोई, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्दै बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम बजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाई, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाई, रहाऊ नाम मिहून गर्भ गल जाई, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारे सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरहु फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम भुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गवाई।

पाखंड वकार रहाउ सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर धार नेड़े वेखे सदा हदूर।

अवर ना कोय गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाओ मोह गमान गुर शब्द जलाए।

जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुझ बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा घर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा तड़ा हर रहया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर न कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक। रहाओ जिन स्यों तड़े करह से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे। थिर न रह मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समरथ नाहे। यह सब तड़े माया मोह पसारी, माया को लूजह गवारी। जन्म मरह जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सुवारी। काल युग मह तड़े पांच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सत संग मलाए। हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे। प्राया सिदर अटकलै अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजै तैसा खावे। जन नानक का हर तड़ा, धर्म सब सृष्ट जिने आवे। आसा महला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया।

लाग गुरमुख हर पाए, नाम हीन कालक मुख माया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीव आया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम दिवाया, आसा महला चौथा, गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख बखाणी, जप जप नाम मन भया आनंदा, सत सत सत गुर

माया मल धारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़ी।

गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास ग्रासा रहाओ, नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मुए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवै हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, हल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सालाही, मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाऊ, हर हर गुरमह भगत रखाई, गुर तुट

अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख धंधा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

समानी तुरिया गुण मिल साध पछानी सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओह रह समाई आसा महला पंजवां निज भगती सील।

सुख विहाय। आसा महला पंजवा, मता करूं सो पकन ना दे। सील संयम कै निकट खलोई, वेश करी बहुरूप दिखावे। ग्रह बसन ना देई, वख वख परमावे। घर की नायक घर वास ना देवे, जतन करूं पुरजाई फरेवे। रहाव तुरकी भेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान तनंतर। तट तीर्थ ना छोड़े जोग सन्यास, पढ़ थाके सिमरत वेद अभ्यास। जह बैसू तह नाले बैसे, सगल भवन मह

दुए मनुख पहचावो। तृतीय मता किस करू उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन इहु मन लपटानी, सहा व्यापारी द्वारे आए,

माना कर मस्तक धार राखियो कर अपना क्या जान है एह लोग अजाना रहा सुहाग हमारो अब हुन सोहयो कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो आंगन मेरा सुबा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सद कुचियां सद

थिर सोहागण संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन्मुख कर परना

तानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाय तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलो सहज सुपाय रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब निश्चल ताय जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकरे निश्चल साधु पाए सहज धुन गावे मंगल मनुआ अब ता को फुन काल न

मरना, मुआ हुए तिस निश्चल रहना, जीवत मुए मुए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाव, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज करवासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुर मिल भए निहाल, आसा महला पंजवा, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर होएगी।

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पाल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाय। आसा महला पंजवा कर कृपा हर प्रगति आया। मिल सतगुर धन पूरा पाया ऐसा हर धन संची है भाई। पाए न जल जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ। तोट न आवे नखोट न जाए खाए खर्च मन रहया अगाए। सो सच साह जिस घर हर धन संचाना इस धन ते सब जग वरसाना। इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना जन नानक अंतवार।

सर पर पौसी रात रहन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे सोए रहे अभागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गाई है नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौ निद तेरह।

सद ही संगा, कुदरत वर्त रूप अर रंगा, करह ना चुरै ना मन रोवन हारा, अवनासी।

त्यों कर प्रत पाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की

पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बंधावो।

रहाउ त्रिपत अगावन साचे नाय अठ सठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानू करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंध

आद एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुरमते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावे, ता प्रीतम होवे मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

यही व्यवहारा भाग्यामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी। आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मालुख देवरिया गोविंद मिण की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाय गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवा औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिनसिया थाउ ताप गया बचन गुर पूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवा बांसत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

पन्या सदा सदाय आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पाव है किल विख जाहि सबे मन तेरे रहाव कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

करन संग मेली सुख सहज आनंद सोहेली साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारी जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल।

चतुराई जा सब किस तुझे मजहार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार देहो समत सदा गुण गावा मेरे ठाकुर अगम अपार रहाओ जैसे जनन जठर मह प्रा

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल मह जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी। बहुत दरबह हस्ती अर घोड़े लाल लाख बह आनी। आगे दरगह काम ना आवे छोड़ चले अभमानी। काहे एक बिना चित लाइए उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा।

ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

कर कर डूबे खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा।

है साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर छेवा महला पंजवा जो तुद पावै सो परवाना सुख सहज मन सोई करन कारण समर

जन्म जन्म की मल धोवै पराई, अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई। जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच ना साकै काहू बातै आगै ठौर ना।

गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाउ, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा, तत योग ना पछाने, उगर गया जैसा।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाली। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखै मन मह इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावै रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द।

सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे, संत धूर तन लावे, मन तन अर्प धरे गुरे आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा, तां का जन्म मरण दुख भागे।

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काड लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाइय सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइय।

मुक्त पय अंधकूप महा कोरते बाहा पकर गुर काढ लिए निरपव पय सगल पव मिटिया राखे राखना हारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी काजर कोट मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख घनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पाव तरलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संगरलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया, सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल नाम।

चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावे रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत टह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां जहां पठाव हो तह तह जाई।

बाट काट ज पीजै, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरैन हर कीर्तन गाइय, सो जन जम की वाट ना पाइय, आठ पहर जिस विसरह नाही, गत होए नानक तिस लग पा।

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सच शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलाब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पय पनीत संतन की तूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस भेटे।

हे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख टीठा, प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे, कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा, सतगुरे अपना सद सदा सम्हारे। गुर के चरण केस संग चारे, जागरे मन जागन हारे। बिना

पंजवा हर हर अखर दुए एह माला जपत जपत पहे दीन दयाला करो बेनती सतगुरे अपनी कर कृपा राख।

मुख हर हर बोले, सोजन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला ताके संग जाई, आसा महला पंजवां, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करे सोई पाल।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरते संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नानक

जानी भोर भया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करो री रहाओ कर्म है अमृत आनन सारेउ खिसर गयो भूम पर डारेउ साध मोहे लादी अहंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे

प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद भली बनी जाके ग्रह सब किछ है पूरन सो भेटिया निर्भय धनी रहा नाम दृढ़ाया साध कृपाल मिट गई भूख महा विकराल ठाकुर।

लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया, साध संग जपियो हर राए, नानक जीवै हर गुण गाए, आसा महला पंजवा दो तुके नौ, उनकै संग तू करती केल, उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरै, ओस बिना को मुख नहीं जोरै, ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहे रीरी रहाव, उनकै संग तू ग्रह महमाहर, उनकै संग तू होई है जाहर, उनकै संग तू रखी

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

सगल उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस सार संग भूले।

मालिक माया, कर कर अनर्थ बेहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उस्ते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मझरिया,

घाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी डीठी अगरक उसके वड़े ठगाऊ छोड़ह ना ही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जाके केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाके एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हा।

चली ताका संग बांचह सुरदेव अमोग दर्श सफल जाकी सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संतहा टहल दीजै गुणतास आसा महला पंजवा सगल सूख जप एकै नाम सगल धर्म हर के गुण गाम महा पवित्र साधका संग जिस भेट त लागै प्रभ रंग गुर प्रसाद होए आनंद पावे जिस सिमरत मन होए परगासा ताकी गात मित

लाए, नानक आए पए सरनाए। आसा महला पंजवां, आठ पहर उदक इशनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी। बिरथा काहू छोड़े नाही, बहुर बहुर।

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा।

सूख सहज मेरा धन सुहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाव, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पनह चरना, तट तीरथ भवे सब धरना, से उबरे जे सतगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बांदा, हउ मैं पचे मन मुख मोराखा, गुरु नानक बाहां पकर हम राखा, आसा महला पंजवां, सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी, ईहा ऊहा कामना प्राणी, संत तृपता से हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रव तुमरी रजाए रहाओ, संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाउ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जांकी सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाउ जांका दान न खूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जांकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जांकै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गहि निरभउ पद पाइय, सास सास सो गुण निद गाइय, दूर ना होई कतहूं जाइय, नदर करे ता हर हर पाइय, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगै हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाव, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी।

बंदन काठ सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वड्डे भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जाको भया दयाला।

गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब कह मन भावे, वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुरु।

सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाउ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रहन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई।

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद घणा नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर हुए। रस कस सब पुंचह अमृत नाम हर हर जपह। मिल पापा मुंचह तत विचार हो संत जन हो। ताते बिघन ना लागै हीन।

तो निद हर पाव सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी सगल गुणा गुणी उत्तमो भरता दूर ना पेखरी एहो मन सुंदर अपना हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाण पचातुरी तू जान गोपाल है सांगरी रहाओ भरता कह सुमानी है एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाएरी गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाएरी आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर रायरी तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री

एक दतार सगल है जाचक, दूसर कै पह जावो, हों मांगो आनल जावो, सगल शत्रपत एको ठाकुर, कौन समसर लावो रहाओ, उठो बैसो रह पेना साको, दर्शन खोज खजावो, ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलपावो, अगम अगम अगाध बोध, कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सत पुरख की, सत गुर पुरख त्यावो, पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर, काट्यो बंद गरावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो।

नाम दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवा महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की

गंधण वहन सुनह उर्जावह नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत अमाहयो बूजी उल्टाया पर तन पर तन परती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच धर्म स्यो रुच नहीं आवै सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाई।

कहो नानक दिन रैन त्यामो मार काढ़ी सगले अपादे इयों जपियो भाई पुरख बधाते भयो किरपाल दीन दुख भंजन।

कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर। जैसा संग बिसियर स्यों है रे, तैसो ही एहो परग्रहो। बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना। छोड़ जाहे तिन ही स्यों संगी, साजन स्यों बैराना। सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा। कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा। आसा महला पंजवा दोपदे, लूक कमानो सोई तुम पेखेओ। मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांधे। फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब विद आगे जानी। भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ। जित जित लाए तित तित लागे।

रहाऊ। तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभ भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवे, आसा घर ग्यारवा महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावे बहु बिद। जैसा है ओहो तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर। सुख है नाही परवेश सारी, साजन संत हमारे लीता। बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाय। एहो जन्म पदार्थ जीतारी, रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी। कहो कमन बिद तरिया रे, कुमन केर अगाह गाखरी। गुर शब्दी पार उतरिया रे, खोजत खोजत खोज बिचारे। तत नानक एहो जाना रे, सिमरत नाम निदान निर्मोलक। मन मानक पथिया नारे, आसा महला पंजवा धोपदे। गुर प्रसाद मेरे मन वसिया, जो मांगो सो पावो रे। नाम रंग एहो मन त्रिपताना, बहुर न कतहु तामो रे। हमरा ठाकुर सब ते उच्चा, रैन दिन

मुहकम फौज हठलीरे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चलीरे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन

हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मनते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

जालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियानपा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो हो।

भौजन लंघी है, सदा हर गुण गाओ, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग, दीन बंदप जी दाता, सरन राखण जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाम, हलत पलत सहाए संगे, एक स्यों लिवलाओ रहाओ, वेद शास्त्र जन त्या

मनुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाओ कर्ण कारण समरथ सो प्रभ जी दाता आप त्याग सगल सियाणपा आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाए संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख बद्दी बढ़ियाई जप

नाम चराव हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय होए सहाई।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मजन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कलयुग उधारिया गुर।

प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा।

दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राख हो संत संगाहे नाम त्याव हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आईय सर्व फल पाईय सगले दुख जाही जीयन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हौ कर्म कमावै बांधियो नलनी भ्रम सुआ कहो नानक जिस सत

लाग ओहो नेहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रह रहाओ जो प्रभ भावे जन्म ना आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे प्रभ संगम लीजे एहो मन दीजे नानक नाम मिले।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखिया बिखै लागे हर वित चित दुखाही

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन मैदान पाए सब

प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मटावो निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल का।

पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवां हरख सोग बैराग आनंदी खेल रीद खायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ तायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु योग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो।

बिनस ना जाए मरहा गुरते जानिया नानक मन मानिया मेरे मना। असावरी महला पंजवा एका ऊट गहो हां गुर का शब्द।

कौन स्यो मन की लोभ ग्रसयो दस हूं दिस धावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वार है द्वार स्वान ज्यो डोलत नह सुध राम भजन की मानस जन्मे अकारथ खोवत लाज ना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कमत बनासै तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर अब कट सरवर नावै बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द क्रोध जलावै गगन निवास समाध लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बलोवै सुभार सरवर मैल ना धोवै जैस्यो राता तैसो होवै आपे करता करे सो होवै गुर हे वसी तन अगन बुझावै सेवा सुरत बेभूत चढ़ावै।

कह नाई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राख रखवाला, त्रे भवन सूजे आप गुआवे, बाणी बूझे सच सुभावे, शब्द विचारे एक लिव तारा, नानक धन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन माने सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंख अलेख या

जीवन मुक्त मन नाम वसाय गुरमुख होए ता सच समाय जिन तर साजी गगन आकाश जिन सब थापी

आचारी जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिर अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई।

मोरो वै दुख कोई, सोरो वै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आपने।

बिन भगत सरोत मुए को सच रोवह मीत त्रै गुण रोवह नीता मीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन संपौ कृष्ण परीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन पै भगती।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचार।

कहा वह बीते भिन नावै मन झूठ अनीते कहाँ चलो हो मन रहो हो करे गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार।

नानक राम नाम मन राता, आसा महला पहला, मन मैगल साकत देवाना, बन खंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लह घर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा, सिमरहो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हो हउमै कौरा, रहाओ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुर मेले, काल कंटक मारे सच पेले, इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा, इहो मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहो मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रिभवन सोजी होई, इहो मन जोगी भोगी तप तापै, गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै, मन बैरागी होमै त्यागी, घट घट मनसा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखै, दर कर महली हर पत राखै, इहो मन राजा सूर संग्राम, इहो मन निरपो गुरमुख नाम, मारे पंच अपने वस किए, हउमै ग्रास इकत थाए किए, गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुख इहो मन भगती जागे, अनहद सुन मानिया शब्द विचारी, आत्म चीन भय निरंकारी, इहो मन निर्मल दर घर सोई, गुरमुख भगत भाव धुन होई, एहनस हर जस गुर प्रसाद, घट घट सो प्रभ आद जुगाद, राम रसायन इहो मन माता, सर्ब रसायन गुरमुख जाता, भगत हेत गुर चरण निवासा, नानक हर जन के

रखाई, अहलस निर्मल हर लिवलाई, राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम ना छोड़ो, आपे बख्श मलावन हारा रहाऊ, कनक कामनी हेत गवारा।

मन दूजा, गुर बिन परम जप है जप दूजा, आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है, देख अचरज रहे बिस्माद, कट कट सुर नर सहज समाद, भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही, जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

0: दुख तिस लागै।
1: जो जन राम नाम लिव जागै,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भए हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी। रहाउ बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हों किया, बंधन पुत कलात मन बी।

पास एक लख लहन बैठिया लख लहन खड़िया गरी सुहारे खांदिया मानन से जड़िया तिन गल सिलका पाइया टुटन मोत सरिया धन जोबन दोए वैरी होए जिन

ब्राह्मण जिस वेख नींद ना पाई कहां सो पान तंबोली हरमा होया शाई माई इस जर कारण कणी विगुत्ती इन जर कणी।

किसनों आख सुनाइए दुख सुख तेरे पाणे होवे किस थे जाए रुआइए हुक्मी हुक्म चलाए बिगसे नानक लिखिया पाईए एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी महला पहला कर अठवां अष्टपदियां।

जाननी काट ब्रह्म लुकाना। एक तपसी बन मह तप कर है नित तीर्थ वासा, आप ना चीन है तामसी काहे भये उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे है, बिन गुर शब्द ना छूट ही भ्रम आवे है जावे है। एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे, नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ को आटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है।

बख्शनहार शब्द कमावही। नानक मंगै सच गुरमुख कालिया, मैं तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहाली है। आसा मोहल्ला पहला, क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला सच टिकै घर आए।

ताम मन भावई चले सदा रजाई अंक सुमावई सच्चा साहिब मन वसै वसया मन सोई आपे दे वडियाइयां दे टूट ना होई।

छूटी है मन मुख पत खोई रहाउ जिन्नी एको सेवया पूरी मत पाई आद जगाद निरंजना जन हर सरनाई साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई

झूठ आन नित नित खरा संभाली है सच सौदा पाई है खोटे नदर ना आमनी ले अगन जलाई है जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई तिन्ना परम ना भेद है हर रसन रसाई।

नाम अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी तां के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ताके रूप ना जाही लखणी।

हर जीव मन वसै सब दुख वसारन हार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रे पवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखै उर धारे साची सोभा साच द्वारे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उदरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर तार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मै बूझै निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागै जागाए सोई सतगुर नाम बुझाया बिन नावै भुख ना जाई नामे तृष्णा अग्न बुझै नाम मिलै तिसै रजाई रहाउ कल कीर्त।

जप पढ़िया गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िया होमै मार, हर जपिया पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वड्याई, एको नाम चेत मेरे भाई, जगत जलंदा देख कै भज पए सरनाई रहाउ, गुर ते ज्ञान उपजै महा सत बीचारा, गुर ते घर घर पाया भगती भरे भंडारा, गुरमुख नाम त्याई है बूझै विचारा, गुरमुख भगत सलाह है अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजै दुख कदे ना होई, गुरमुख होमै मारी है मन निर्मल होई, सतगुर मिले है आप गया त्रे भवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मलाई, पूरा गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुर ता मिले जा नदर करे, किल विक पाप सब कटी है फेर दुख बिघन ना होई, अपने हाथ वड्याईया दे नामे लाई, नानक नाम निधान मन वसिया वड्याई पाई। आसा महला तीजा, सुन मन मन वसाए तू, आपे आए मिले मेरे भाई, अन दिन सच्ची भगत कर सच्चै चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई, होमै दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाउ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विण सतगुर पाई ना जाए, पंडित पढ़ दे जोत की तिन बूझ ना पाई, आपै थै सब रखियोन किस कहन ना जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा, आप पवाली दितियन अंतर लोभ बकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा, भगत पियो नानो बख्शियन अंतर भंडारा, ज्ञानिया नो सब सच है सच सोजी होई, कोई भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई, कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वस ना आवनी, नाम होमै मारी। आसा महला तीजा, घर अंदर सब वत है बाहर किश नाही, गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई, सतगुर ते हर पाईए भाई, अंतर नाम निधान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाउ, हर का गाहक होए सो लए पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिब दिष्ट देखे मुक्त भंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा, पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई, नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई, बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई, भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गुआई, घर दर छोड़ अपना पर कर झूठा जाई, चोरै वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई, जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए भाई, अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई, नानक

नानिव है दूजा भाउ सुआव इहो मनुआ क्यों कर वास आवे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती घर आवे रहाव सुहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावे है फिर अपना सच्ची सेज सुपाई फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाई ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सबराई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाई प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जत पत शब्दे होए बिन नावै सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए हों हों कर दी सब फिरे बिन शब्द हों ना जाई नानक नाम रते तिन हों मैं गई।

आप दे आज्ञा जुग जुग प्रगट होए ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपै ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोय जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुरते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

ठीक है बहुविद श्रिष्ट उपाय हुक्मी कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिरकार इक ना बख्शे मेल लह एक दरगाह मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उतबताए नदर करी जिस आपनी तिस नु भावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कथ कहने अंत ना पाए गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वीचा।

कर गए पल्ले किस ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यो लिव लाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाए हस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाई अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए मन सदा हरियावला सहज हर गुण गाए रहाओ मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिल लाहे जिन्ना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाए गुरमुख बीजे सच जम्मै सच नाम वापार जो इत लाहे लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार अन दिन रावै फिर अपना सच रखै उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली पिर रवै हऊ मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुनहा बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक आखण आखिया जे सुन धरे प्यार आसा महला तीजा सतगुर ते गुण उपजै जा प्रभ मेले सोए सहजे नाम त्याई है ज्ञान प्रगट होए।

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस युग में शोभा नाम की।

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार। आसा मोहल्ला तीजा अनरस मैं भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिर बिरथा जन्म गवाई रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई बिन कर्मा किश पाइए नाही क्या कर कहिया जाई आप पछाण है शब्द मर है मनहु तज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार बिन नामे सुख ना पाईए ना दुख विचों जाई इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाई दुहागनी फिर की सार ना जानही क्या कर करह श्रींगार पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी सिंगारियां अपनी सह लिया मलाई मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होए खुआर आप मलाइन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजली तित सच्चै दरबार। आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर गुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई रहाव साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुर ज्ञान।

सत सहज सुख के सब हाट, साहा वपारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साह सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत, रहाव दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मुरार, मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाहे खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चलतो पेखी निहचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों निहचल पाव है ठाव, मीत साजन सुत बंद पा को होत ना साथ, एक निवाहु राम नाम दीना का प्रभनाथ, चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते, भेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह, साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास, जो तुद पावे सो भला तेरे पाणे कारज रास, सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद, कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद।

सुख सिंगार बिखिया के फीके तज छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरनी पाए जो जन राते राम स्यों प्यारे अनत ना काहू जाए हर रस जिन्नी चाखिया प्यारे तृप्त रहे आगाए अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाही जाय। जो तू कराम है सो करी प्यारे, अवर किछ करन ना जाय। दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारे। तुर मस्तक लेख लखाय, एको आप वरतदा प्यारी, घट घट रहिया समाय। संसार कूप ते उधर लह प्यारे, ना

सब थाई एक वसिया मन माही तत्तै तंच करहू क्या प्राणी तरी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना पाज पढ़ो तुम हर सरना ठठै ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डै दंप करहु क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसै सरेव हो ता सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहया तड्डै ताहे उसारै आपे ज्यों तिस पावे तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चिल्लाए तिस निस्तारी जा को नदर करी नाणै रवत रह घट अंतर हर गुण गावे सोई आपे आप मलाए करता पुनरप जन्म ना हुई तत्तै तारू पवजन हुआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया थत्तै थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला दद्दै दोष ना देऊ किसै दोष करमा आपणिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अवर जना तद्दै धार कला जिन छोड़ी हर की जी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्नै ना हां भोग नित भोगै ना दीठा ना संभलिया गली हो सुहागण पैणे कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पै पातशाह परमेश्वर वेखण को परपंच किया देखै बूझै सब किछ जाणै अंतर बाहर रब रहिया फप्पै फाही सब जग फासा जम कै संगल बंध लिया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर सरनागत भज पया बब्बै बाजी खेलण लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालण आप लगा पब्बै पालह से फल पावह गुर प्रसादी जिन को भौ पया मनमुख फिर है ना चेतह मूड़े लख चौरासी फेर पया मम्मै मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरो पड़िया मम्मा अखर विसरिया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाणै गुरमुख आखै गुरमुख बूझै गुरमुख एको जाणै रारै राव रहिया सब अंतर जेते किए जनता जंत अपाई तंदै सब लाए कर्म हुआ तिन नाम लया लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाणे तां कै हुक्म पया ववै वास देओ परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखै चाखै सब किछ जाणै अंतर बाहर राव रहिया राड़ै राड़ करहै क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोह कुर्बान किया आहै होर न कोई दाता जी उपाय जिन रिजक दिया हर नाम त्यावो हर

कराई सब किस जाने, नानक शायर इव कहिया राग आसा महला तीजा पट्टी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया, काके कंगे काल पया रीरी लल्ली पाप कमाने, पर अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया।

रूपया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कके काम क्रोध परमयो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़ है गुण है तू बहुत पुकार है विन बूझे तू डूब मुआ तत्ते तामस जले हो मूड़े थत्ते थान पृष्ठ हुआ कग्गे कर कर फिर है तू मूड़े दद्दे दान ना तुद लया पप्पे पार न पवही मूड़े पर पंच तू पलच रहया सच्चे आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बे पवजल डुब हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मह पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद भी सरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर का उपदेश सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाही पया गगै गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मन मुख पढ़े तीता दुख लागे बिन सतगुर मुक्त ना हुई हरारे राम चित कर मूड़े हृदय जिनकै रव रहया गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया तेरा अंत ना जाई लखिया अकथ ना जाई हर कथिया नानक जिन को

मुंद जोबन बालड़िए मेरा फिर रली आला राम तन फिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन फिर मेला हुए स्वामी आप प्रभ कृपा करी सेजा सुहावी संग फिरकै सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावे ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औ पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री तर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यो भावे त्यो रावे तन मन फिर आगै शब्द सुभागै घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईऐ बहु चतुराईऐ भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारे हम नाही लोकाणी हासा महला पहला अनहदो अनहद वाजै रुण चुन कारे राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारे राम पन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारे तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनू सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी राम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीरथ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजै दाते तेरी भगत भरे भंडारा राम नाम बिन मुक्त ना होई।

का शब्द संभाले साथ तेरे सो सहु सदा है एक खिन हर नाम संभाले जन्म जन्म के तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे साचे नाल तेरा गंध लागे गुरमुख।

सहज धुनि उपजे जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सत्के रहे आसमाए यूं कह नानक सतगुर मिले है तावत थमिया निज

ना सहो जान है, मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी बधाई।

पवाहे। गर्भ लागा जाहे मुग्ध मन, अंत गया पछतावहे। अहंकार तिसना रोग लगा, बिरथा जन्म गवावहे। मन मुख मुग्ध चेत है नाही, अगे गया पछतावहे। यूं कह नानक मन तू गर्भ अटिया, गर्भ लदया जावहे। मन तू मत मान कर है, जे हों किछ जानदा। गुरमुख ने माणा हो, अंतर अज्ञान हों बुद्ध है। सच शब्द मल खो, हो नमाणा।

सतगुरु अगे मत किसे आप लखावे अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे सतगुर कै भाणे करह कार सतगुर कै भाणे लाग रहो यूं कह नानक आप छड़।

महा आनंद सहज भया, मन तन सुख पाया, सो सहो चित आया मन वसाया, अवगण सब वसारी, जा तिस भाणा गुण प्रगट होए, सतगुर आप सवारी, से जन प्रवान होए, जिन्नी एक नाम दिड़िया, दुतिया पाओ चुकाया, यो कह नानक धन सो वेला, जित मैं सतगुर मिलिया, सो सहो चेते आया, एक जंत परम पुले, तिन सह आप पुलाए, दूजे पाए फिर हैं, हम मैं कर्म कमाए, तिन सह आप पुलाए, कुमार

साए सब संसाधु दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजे है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यो रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यो चक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचह भोग हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिक

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवे है लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई आसा महला चौथा चिम चिमे चिम चिम वरसै।

राम निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गवाया, राम गुर परचै त्याया,

जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम, मन तने अर्पया बहुत मन सरदया, गुर सेवक पाए मलाए।

बनासन पतत पावन हर नाम जियो हर सेवा पाई परम गत पाई हरे उत्तम हर हर काम जियो हरे उत्तम काम जपिए हर नाम हर जपिए अस फिर होए जन्म मरण दोए दुख मेटे सहजे ही सुख सोए हर हर कृपा तारो ठाकुर हर जपिए आत्म राम जियो हर हर करता दुख बनासन पतत पावन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सत गुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपिया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी अराध्या जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो।

हर हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु, मन चूका सोग वजोग जियो।

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सखाई, हर दरगाह पावे मान जियो। सत जुग सब संतोख सरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। एता जोगे आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हिरदय क्रोध जलाए दियो। मन हिरदय क्रोध महा बिसलोद, निरपता वह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर, देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए।

पह जग पुन आरंभ है। हथ किरिया कर्म कमाए दियो, किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए दियो। महाजुद जोद बहुकीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सतगुर मल लै जाए दियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाय दियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए दियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हिरदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सुहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

सत संगत मन पाई हर रस नरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तारहु पाखण हम तारहु कढ लेवो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते।

मुख मस्तक भाग सुभागा जन नानक हर कृपा तारी मन हर हर मीठा लाए जियो हर दया प्रभ तारहु पाखण हम तारहु कड लेव हो शब्द सुपाए जियो आसा महला चौथा मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन मुकत सुख होई जीवन मरन हर नाम सुहेले मन हर हर हृदय सोई मन हर हर वसिया गुरमत हर रसिया हर हर रस गटाक पियाओ जियो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरन ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकरे ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको एहो जी अड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जै हर वस्त लड़ी जै जिसकी वसत सो ले जाए जियो मन मुख करन पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो जिसकी वसत प्रभ लय स्वामी जन उभरे शब्द कमाए जियो जग मरन ना पाया नित आप लकाया मत जम पकरे ले जाए जियो तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया जन उभरे हर हर ध्यान जियो हर सोभा पाई हर नाम वडियाई हर दरगाह पैंदे जान जियो हर दरगाह पैंदे

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहोड़ मरन ना होई, हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावै सोई, जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नाम अवर ना कोई जियो, जग उपजै बिन सै बिन सबनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, आसा महला चौथा संत, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आदि निरंजन निरंकार जियो, तां की गत कही ना जाई, अमित वडियाई, मेरा गोविंद अलख अपार जियो, गोविंद अलख अपार अपरंपर,

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब में रहया समाए जियो, घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका अंत न पाया, तिस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर, गुरमुख अलख लखाया, सदा आनंद रहै दिन राती, सहजे नाम समाए जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो, हर हर प्रभ एको अवर न कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो, पुरख सुजान तू प्रधान, तुद जेवड़े अवर ना कोई, तेरा शब्द सब तू है वरत है, तू आपे करह सो होई, हर सब मह रव्या एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो,

सब तेरे शब्द समाए दियो। सब शब्द समावे जां तुद पावे, तेरे शब्द वड्याई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए। शब्द रहया समाई तेरा, शब्द अगोचर गुरमुख पाईए।

तेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर

हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजी हों मांगू सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वच्छल हर बिरद है।

मोर हर मार्ग चाली, मेरे मन तन नाम आधार है, हम मैं बिख जाली, जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलिया बनवाली, गुरमुख

रस पिनी मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मनी हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिनी दे होरी अमृत बुर के राम राजी जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठ हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बन जे है गुर साहू सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत ललाट लखासी सच साहू हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब पांडे तुदै साजिया।

ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाने राम राजी, जे बाहरों

है मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजी गुर सिखी सो थान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल ताए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर टुठा। जन नानक हर हर होया,

हर जुग जुग भगते उपाया पैज रख दाया राम राजी हर नाखश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तरा।

हरे मन तृष्णा ना बुझि मेरे प्यारे, नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे, नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चात्रक बूंद जिवें मन

जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे मन चिंदियाड़ा फल पाया हर तुठड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेलसा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा।

भया गृहवास आया मंगल गाया पांच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणे साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियो मन मान।

सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचर

सरसियड़े मेरे भाई सब मीता राम, बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम। गुरमिल जीता हर हर कीता, टूटी पीता भरम गड़ा, पाया खजाना बहुत नदाना, साणथ मेरी आप खड़ा, सोई सुगयाना सो परदाना, जो प्रभ

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर मुन जन सहज वखाणी राम। सहजे वखाणी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया।

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम। वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रब जाता। घट घट रब रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता, गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे। बिनवंत नानक सरण तेरी राख कृपा धारे, बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम। तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम, हर धूड़ी नाइय मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे। अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे, मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा। बिनवंत नानक गुर सरण तरिये अपने प्रभ पावा। आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर चरण कमल मन बेदया किशियान न मीठा राम राजे। मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे, हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे। गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे, प्रियो सहज

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालक जीना सुत।

पंथ भणीऐ कह साध संग ना डरपीऐ कर कीरत गोविंद गुणीऐ सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यों ने हो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करीजै इहो मन दीजै हथ लाइय चित।

कहो नानक संत अनंत ठाकुर के हर सियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चित व्यास घनी कद दिन यर देखी है। गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजिया। हर प्रीत करीजै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया। थिर साधु सरणी पड़िया चरणी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिन यर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत कीजै। जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै। मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी। तेरे अपना पाया रंग लाल बनाया हत मिलियो मित्र चराणी।

की जय। आसा महला पंजवा सलोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब हर पाया मन माही। संत जां को खोजह असंख मुनि अनेक तपे। ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना। कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ है आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार शंकर जटा धार। चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावह जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेवह लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्यावह वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी। अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवा सलोक, उदम करहो वड भागी हो। सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवह। दुख दर्द भ्रम जाय संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। भेटत साधु संग जमपुर नह जाई है। दुख दर्द ना पौ ब्यापै नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना। परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन। जल फल मही अल पूरिया एक निमख जा कैर दैवसिया। मिटे तिसैव सूरिया अगाध बोध समरथ स्वामी। सर्ब का पौ भंजना नानक पयंपै चरण जंपै। पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरे। सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरे। आद अंत बेअंत खोजें।

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत।

आवई अवनासी अवगत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावै नानक वखाणै गुर बचन जाणै फिर संतन सुहाग मरै ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घणा सुखवंती सानार सोभा पूर्बणा मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुरबचन जाने जा को राम पतार ताकै आनंद घणा आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटै संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है, जां कै मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया, साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

हो अपराधी मत हीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल भरम करम अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नान।

संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगंत आयो बहु परदेसह धायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीक उधारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ता की शरण गही निरपव भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंध पजानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अगन सागर भये सीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूरन साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरलै किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निद जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अनदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवा शंत कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रैनड़ी है चाम कन तारी जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो तज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया।

न आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखागामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखियां कुछ है कहो कंत नी जानी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत भाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसियड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक सरण स्वामी सदा हर जन तागे हासा महला पंजवा उठ मंज बटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या तन पसम टेरी जमै हेरी काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी रहे ओ पैनन खाया नानक कमाना संग जुलिया नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये नित पाप कमायन पापा कमाने छड़ह नाही लै चले कत गलाविया हर चंदौरी देख मूठा कूड़ सेजा रावया लब लोभ अहंकार माता गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी तरण देहला भया खिन मह खसम चेतना आयु दुखा सजाई गणत नाही की आय अपना पायु गुजा कमाना प्रगट होवा ईत उतह खुआरी नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत तराया।

धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनुग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निद सिद चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने करतार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हमें हर रस चाखिया।

आयो माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथ है संग देख करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट है दुख कमाते वलवंच कर उदर पर है मूर्ख गावारा सब किश दे रहया हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काए मनु विसारी है मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारी है सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजिए प्रभ एक करने हारा खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा कूड़।

तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी पूछ अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किस नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

पाद कमला प्रम पीत कमला प्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो।

करत न लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ हजार। एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन

रत्ते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद। नानक बुझण पूरै भाग महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

कुदरत जाति जिन सी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सबाया सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन बर्तन सर्ब जंजाल नानक मुस्तै ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा झाट पाए।

कोलू चरखा चक्की चक थलवारो ले बहुत अनंत लाटू मादानिया अनगाह पंखी पौंदिया लैन ना साह सूए चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदिया गणतना अंत बंधन बंद पवाए सोए पै किरत नचै सब कोए नच

मन भाऊ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लै नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख।

तीर्थ नावहे अर्चा पूजा अगर वास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन।

ए सब नहा जिन करता करना किया चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन यो पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस तिस देवान अपहग।

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया।

कूड़ कप्पड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियों।

मल उतर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार ना सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है।

लेखै पत पवै चंगे सेई के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया इन्ना जनता कै बस किश नाही तुद वेकी जग ते उपाया इक नानू तू मेल लै इक आपहु तुद खवाया गुर किरपा ते जानिया जिथै तुद आप बुझाया।

होइ बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।

गुनाहगार ता उमी साधना मारी है जेहा काले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है अड़िया अते उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाहु त्रेत रथ जत का जोर अगे रथवाह द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह कल युग

सह साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लोह भया।

वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया ने

फिर पाई होर नानक तग ना टुटई जे तग होए जोर। महला पहला नाए मन्ने पति उपजै सालाही सच सूत दरगाह अंदर पाई है तग ना टूट सपूत। महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेहवा तग ना अखी वे तगा आपे वत्तै वट तागे अवर।

प्रकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

काग इन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याईए सोच होवे ता सच पाईए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो हो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एहे करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

फिक्का मूर्ख आखिया पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीरथ जे नावह उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हस है रंग रूवह चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

देखै धारिऐ, देखै कीता अपना, तर कच्ची पक्की सारिऐ, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारिऐ, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनु विसारिऐ, अपना

नानक आशिक कांडीए सद ही रह समाय, चंगा चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए। आशिक इहो ना आखिए जे लेखै वरतै सोए, महला दूजा सलाम जवाब दोवें करे।

किसनो अगली ओह वजहो पेदूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म।

कियो। गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया। कमन काज जग उपजै बिनसै, कहो मोहे समझाया। देव करहु दया, मोहे मार्ग लाभ हो।

इन भेद अपियो ना चूके कही ना उपजे उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव